आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-350।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता:
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।

परशुराम पर श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0975-75।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
9: बन के रहमत खुदा की सुनो, बन के रहमत।

जिसकी चाहत को इंसान को, जिसकी अजमत पे सब सर धरे, जिसकी चाहत हो इंसान को, जिसकी अजमत पे सब सर धरे, अरमा है खास और आम का, इसकी ख्वाहिश फरिश्ते करें। जिसकी चाहत हो इंसान को, जिसकी अजमत पे सब सर धरे, अरमा है खास और आम का, इसकी ख्वाहिश

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से

0: चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हां, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99 393 65 930।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
11: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिया लो पराली जलाए जले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मोहम्मदपुर में पीट पीट कर एक प्रेमी की कर दी गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सभी थानों पर आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुंडा परेड का हुआ आयोजन। 33 शिक्षकों को जिला पदाधिकारी ने किया निलंबित। रतन सराय में कांग्रेस पार्टी ने दिया एक दिवसीय धरना। और हम पार्टी अब करेगी गरीब चौपाल का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बीती रात मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम बादल कुमार सिंह, पिता हरेंद्र सिंह, जो झकरा थाना गोविंदगंज जिला पूर्वी चंपारण का निवासी है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए मझवलिया गांव में पहुंचा था। इसी दौरान प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और लाठी डंडे से बुरी तरह से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और FSL की टीम के माध्यम से साक्ष्य संकलन किया गया है। और इस मामले में प्रेमिका के परिवार के दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जांच कर रही है। इस कांड को लेकर सदर SDPO 2 राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
8: मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझवलिया में बीते रात्रि सुबह में एक लड़का जिसका नाम बादल कुमार, जो कि गोविंदगंज थाना मोतिहारी का रहने वाला है, अपने प्रेमिका से मिलने ग्राम मझवलिया के घर पे आ गया, जिसका कि पूर्व से काजल कुमारी पिता अनिल सिंह से प्रेम प्रसंग चलता था, जबकि काजल कुमारी शादीशुदा है, एक बच्चे भी है, लेकिन अभी वर्तमान पति के साथ उसका संबंध ठीक नहीं था। और तो तत्काल अपने मायके मझवलिया में रहती थी, उससे मिलने जब बादल आया और उसके तो उसके परिजन द्वारा उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट किया गया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसे इलाज हेतु बगल के ट्रॉमा सेंटर पर ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है एवं बरामद सभी मोबाइल को खंगाला जा रहा है। सबको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है आवेदन प्राप्त होने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तत्काल वो लड़की और उसकी माँ को पूछताछ हेतु थाना लाया गया।
7: पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज जिले के सभी थानों पर गुंडा परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान सूचीबद्ध असामाजिक तत्वों को थाने पर बुलाकर कड़ी चेतावनी दी गई तथा उन्हें किसी भी प्रकार की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। इस दौरान लाल नोटिस लेकर गुंडा परेड में सभी आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग थाने पर पहुंचे। ये सभी लोग जो न्यायालय से जमानत पर बाहर निकले हैं, उन्हें अब पुलिस प्रत्येक रविवार को थाने पर बुलाकर गुंडा परेड में कड़ी चेतावनी दे रही है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में तैनात कुल 33 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया है। तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के बाद अब इन सभी लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी बना रहे थे। इसकी जब जाँच की गयी तो ये सभी लोग पकड़े गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 13 मई को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की समीक्षा की थी और जांच में पाया गया कि 11 मई को 15 और 17 को जांच की थी और बताया गया कि 13 मई को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की समीक्षा के दौरान जांच में पाया गया कि 11 मई को 15 और 12 मई को 18 शिक्षकों ने विद्यालय से 100 किलोमीटर भी या उससे भी अधिक दूरी से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की थी, जिसके बाद जांच कर निलंबन की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इन सभी शिक्षकों के निलंबन के बाद से तमाम शिक्षकों में भय का माहौल भी देखा जा रहा है। जो लोग नियमों को ताक पर रखकर ड्यूटी कर रहे थे, उन पर अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इधर बरौली प्रखंड के रतन सराय रेलवे स्टेशन पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया। इस शांतिपूर्ण धरना के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गोमती नगर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव को लेकर रतन सराय स्टेशन पर मांग की गई। इस दौरान बरौली प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक्सप्रेस सहित महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। कुचायकोट प्रखंड के मतिया खास पंचायत में राम जानकी मंदिर पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को सुबह कलश यात्रा निकलेगी। महायज्ञ के संयोजक आचार्य शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे से लगभग 1000 कन्याएं कलश यात्रा में सम्मिलित होंगी। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से इस यज्ञ की तैयारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता कर रही थी। मतिया खास के मुखिया रामेश्वर यादव की अध्यक्षता में इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसमें जनता तन मन धन से लगी हुई है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर हम पार्टी के जिला कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने अध्यक्षता की। इस दौरान अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धि प्रकोष्ठ के संजय सिसोदिया भी आए थे। किसान मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन और प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान पार्टी ने निर्णय लिया कि गरीब चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन सहित तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। सभी विधायक एवं विधान परिषद के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 मई 2026 को जिला मुख्यालय में इस गरीब चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब इसकी तैयारी में पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं। पिछले 24 घंटों में अलग अलग मामलों में गिरफ्तार सभी 48 लोगों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें बताया जा रहा है कि हत्या के प्रयास और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर तथा शराब की तस्करी में आरोपियों को पकड़ा गया है। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने चालान कर दिया। साथ ही यातायात पुलिस ने भी आज 1,76,000 से अधिक राजस्व की वसूली अलग अलग वाहन चालकों से जुर्माना लगाकर की। वहीं पुलिस ने सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब को भी जब्त किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जिले के सभी थानों पर आज चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में चौकीदारों को सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। स्थानीय सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने और पुलिस तथा आम जन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर आसूचना तंत्र को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए। इधर नगर थाना की पुलिस ने 26 लीटर से अधिक शराब के साथ एक बोलेरो वाहन को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस निरंतर जांच अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चैनपट्टी स्थित चिमनी के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो गाड़ी जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, पुलिस पहुंची तो इस गाड़ी के अंदर से पुलिस को शराब मिली। हालांकि इस गाड़ी को चलाने वाले और शराब तस्कर फरार हो गए थे। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है और वाहन चालक तथा वाहन के मालिक के विरुद्ध अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के उचका गांव पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों को पैनल अधिवक्ता हैदर अली और पीएलवी मुन्ना कुमार की टीम ने मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक अक्षमता, इसके लक्षण, ऐसे व्यक्तियों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के रहने के तरीके, मानसिक बीमार एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के इलाज हेतु अलग वार्ड की व्यवस्था और इन्हें मिलने वाली विधिक सहायता इत्यादि के विषयों पर लोगों को जानकारी दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मोहम्मदपुर में पीट पीट कर एक प्रेमी की कर दी गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सभी थानों पर आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुंडा परेड का हुआ आयोजन। 35 शिक्षकों को जिला पदाधिकारी ने किया निलंबित। रतन सराय में कांग्रेस पार्टी ने दिया एक दिवसीय धरना और हम पार्टी अब करेगी गरीब चौपाल का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
9: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
9: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
10: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
11: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
14: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
14: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
15: ठक ठक
16: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radioremjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आप सभी को सब परिवार रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं आप पूरे परिवार के साथ खुश, तंदुरुस्त और बेहतर होंगे। रेडियो रिमझिम का आपका संदेश मिला कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह रविवार को शाम को 7:45 से और इसका पुनः प्रसारण सोमवार के सुबह 7:10 से होता है। यह कार्यक्रम आपके विचार से, आपके सुझाव से और आपके आदेश के अनुरूप होता है। आप जो सप्ताह भर रेडियो रिमझिम 90.4 के कार्यक्रम रेडियो से, ऐप से, इंटरनेट से, किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, यदि इसमें कहीं कमी रह जाती है या किसी कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का आपका अनमोल सुझाव हमें जब प्राप्त होता है उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि हम जो है सेवक हैं और आपके आदेश का अनुपालन करना हमारा परम कर्तव्य है। रेडियो रिमझिम लंबे समय से स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज को पहुंचाता रहा है और सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता है जो जहां हमें सुन रहा है वह स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने घर परिवार के साथ जुड़ा रहे। रेडियो रिमझिम आपका संदेश मिला कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त सारांश होता है जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करते हैं और हम ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमारे अनमोल श्रोता जो देश विदेश दूसरे प्रदेशों में भी रहते हैं रेडियो रिमझिम के उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपके संदेश को हम बड़े ही संयम से संग्रहित करते हैं, फिर उस पर कार्य करते हैं। आपका संदेश मिला में सभी उम्र वर्ग के लोगों का जो विचार आता है, जो सुझाव आता है, उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से ही एक सेवक बनकर सदैव श्रोताओं के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से करते आया है, जिसका परिणाम यह है कि आज जिले के तमाम पंचायतों में या नगर पंचायत या नगर परिषद क्षेत्र हो, जब भी हमारे प्रतिनिधि जाते हैं उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है और कई लोग वहीं पर अपने सुझाव और विचार भी देते हैं। आपको पता ही है रेडियो रिमझिम सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत अपने बातों को रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा जीविका के जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं का बना हुआ है उनके बीच जाकर अपने बातों को रखता है। इसके अलावा जो हमारी आशा दीदी हैं, एनम दीदी हैं या जो आयुष मंदिर बना हुआ है वहाँ भी हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, उनके विचारों को लेते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जन जन तक जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि आवाज से व्यक्ति की दुनिया बदलती है, भावना बदलता है और विचार में भी परिवर्तन होता है। चंदन के वृक्ष के पास यदि दूसरा वृक्ष भी रहता है वह भी चंदन के तरह महकना शुरू कर देता है, तो हमारे जितने भी श्रोता हैं वह चंदन के समान हैं और उनके संसर्ग में रहने से हमें भी कुछ बोलने का, समझने का अवसर मिलता है। आपका जो संदेश व्हाट्सएप, ईमेल या फेसबुक के इनबॉक्स के माध्यम से आता है वह बड़ा ही लाजवाब होता है। कई व्यक्ति उलाहना करते हैं, कई व्यक्ति प्रेम पूर्वक संदेश देते हैं, कई लोग फोन करके अपने बातों को लिखवाते हैं। आज के दौर में जहां किसी के पास समय नहीं है वहीं पर हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के श्रोता अपने बात को रखने के लिए हर यांत्रिक यंत्र का उपयोग करते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। हम अपने श्रोताओं से बहुत कुछ इस लंबे समय में सीखने का मौका मिला। कई बार जब हम क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो हमारे आदरणीय श्रोता बड़े ही प्रेम से बात करते हैं, अपना समय देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। हम एक गुमनाम व्यक्ति हैं और हमारी कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन आपके वजह से रेडियो रिमझिम की पहचान राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिले स्तर पर हो गया, जिसके वजह से हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। रेडियो रिमझिम सभी श्रोताओं के दिल में रहता है, मन में रहता है, एक दूसरे के भावनाओं का हम लोग कद्र करते हैं। हम अपना प्रसारण सुबह 5 बजे रेडियो पर शुरू करते हैं और रात को 11:10 पर समाप्त करते हैं, लेकिन ऐप के माध्यम से 24 घंटे हमारा प्रसारण चलता है। कई नए श्रोता जुड़ते हैं उन्हें बताते चले, रेडियो रिमझिम के नाम से फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग है, जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है सबका सफल संचालन हम लोग करते हैं। रेडियो रिमझिम के पास मेरे जिंदगी का अनुभव मिलता है और जो युवाओं की शक्ति है, ऊर्जा है, उसके माध्यम से हम बेहतर प्रसारण कर पाते हैं। समय के साथ बचपना, युवावस्था, जवानी समाप्त होते जाता है और व्यक्ति अंतिम समय में वयोवृद्ध अवस्था में पहुंचता है और वह अवस्था यह होता है जिसमें जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कई परिवार के बच्चे हैं जो अपने यहाँ के वयोवृद्ध व्यक्तियों को बैठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके जिंदगी का अनुभव सुनते हैं और खूब हंसते भी हैं। क्या ऐसा होता था कि गांव में लाइट नहीं था, ढेबरी लकड़ी के दिया से आप लोग पढ़ते थे, वह समय कैसा होगा। फोन पर बात करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाकर कहीं फोन पर बात होता था। 50 साल पहले जब गांव में डाकिया आते थे तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे कि मेरा पत्र आया, मेरा पत्र आया। वह भी दौर था। आज जो थामे गोपालगंज, मीरगंज या सिधवलिया बैकुंठपुर के तरफ जो ट्रेन चल रही है, आज से कुछ समय पहले वह मीटर ग्रेज ट्रेन हुआ करती थी। शाम को 6 बजे यदि आप सांसामूसा बैठते थे तो अगले दिन दोपहर 2 बजे तक हाजीपुर पहुंचते थे। वह भी एक दौर था और आज का भी दौर है। उस दौर में भी लोग खुश रहते थे, आज के दौर में भी खुश हैं। जिंदगी में ज्यादा पाने की लालच में हम अपने जीवन का मूल्यवान समय नष्ट कर देते हैं। जीवन का जो समय है वह बड़ा ही अनुपम है। जीवन में धन के बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन धन के लिए यदि हम पागल होते हैं तो यह बेहतर नहीं है। कहा जाता है कि बच्चा जब धरती पर आता है तो माँ के आंचल में उसके खाने के पीने के लिए दूध आ जाता है। यह ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक देन है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। हमें अपने कर्तव्य को, काम को बेहतर ढंग से करना है। जिसे जो भी जिम्मेवारी मिला है यदि वह बेहतर ढंग से करता है तो यह राष्ट्र सेवा भी होगा और देशभक्ति भी होगा। हम अपने काम से यदि अनमने मन से रहते हैं तो न मेरा प्रगति होगा और न कार्य देने वाला का प्रगति होगा। इसलिए जहाँ रहिए संपूर्ण रहिए, आधा अधूरा काम जो है बेहतर नहीं होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम में कई रिकॉर्डेड कार्यक्रम हमने इस सप्ताह लगाया है। भारत वर्ष की कहानियाँ, हवा महल, बहुत तरह के कार्यक्रम जो है सुबह शाम लगाए गए हैं। और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं वह अपने निश्चित समय पर चल रहे हैं। और समाचार जो राष्ट्रीय या प्रांतीय है वह भी व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। आप सबका स्नेह है, आशीर्वाद है, सहयोग है, तब हम बेहतर कर पाते हैं। ना तो मेरी औकात है बेहतर करने की, ना क्षमता है, लेकिन जिस तरह एक कमजोर व्यक्ति भी दौड़ के मैदान में जब दौड़ने लगता है और दर्शक दीर्घा से लोग चिल्लाने लगते हैं दौड़ जाओ दौड़ जाओ, तो उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है, एक ऊर्जा आ जाता है, एक नैसर्गिक आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह आप लोगों का स्नेह और प्रेम के वजह से हम जो है रेडियो रिमझिम का बेहतर से बेहतर प्रसारण करने का प्रयास करते हैं। फिर भी कहीं न कहीं कुछ चूक होती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, समाज के सभी वर्गों का जब संदेश आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अनुभव होता है कि समाज के सभी वर्ग, धर्म, जाति, उम्र के लोग हमें सुनते हैं और हमें अपना स्नेह देते हैं। हमारे साथ मिस्टर सोनू जी भी बैठे हैं। आपका बहुत सारा संदेश है, बात तो खत्म नहीं होगा, तो सोनू जी आपके संदेश को पढ़ रहे हैं और मैं पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद
3: जी। सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश फोन के माध्यम से लिखवाया गया है, लाल बहादुर प्रसाद, ग्राम नाधना, पंचायत कल्याणपुर, प्रखंड बरौली से संदेश लिखवाते हैं। सुझाव देते हैं हर गांव की कहानी में इनके गांव पर भी ध्यान दिया जाए कि इनके गांव का सड़क टूट गया है और पुल टूट गया है, तो इसका अपील रेडियो रिमझिम करे। और अंत में श्री कृपा शंकर सर को मेरा नमस्कार। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
2: आदरणीय लाल बहादुर प्रसाद जी, आपके पूरे परिवार को, नाधना पंचायत के सभी निवासियों को और प्रखंड बरौली के सभी भाई बहनों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह प्रेम की डोर है कि लाल बहादुर जी अपने बातों को रेडियो रिमझिम तक पहुंचाए हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, हर ग्राम पंचायत में मुखिया जी के पास, जिला परिषद सदस्य के पास और स्थानीय विधायक के पास पर्याप्त अनुदान या फंड होता है जो अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करे। हम लोग पंच, वार्ड, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, विधायक, सांसद, सबको हम ही लोग चुनते हैं और उनको चुनने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे गांव का, हमारे पंचायत का, हमारे क्षेत्र का जो सामूहिक कार्य हो उसे करे, यह उनकी जिम्मेवारी बनती है। लाल बहादुर प्रसाद जी रेडियो रिमझिम जन प्रतिनिधियों से निवेदन कर सकता है, अपील कर सकता है कि नाधना पंचायत में, प्रखंड बरौली में जो समस्या है उसे ठीक किया जाए। यदि गांव का सड़क टूट गया है तो उसे बनाया जाए, यह हमारी भी अपील होगी क्योंकि सरकार की भी मंशा है कि हर गांव में बिजली और हर गांव जो है मुख्य सड़क से जुड़ा रहे। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है। यदि इसमें कहीं चूक हो रही है तो एक आम आदमी होने के नाते हमें भी अपने मुखिया जी से, जिला परिषद सदस्य से, स्थानीय विधायक से एक बार कम से कम व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए और बताना चाहिए। जहां आज के दौर में लोग अपने परिवार, बच्चों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, उस दौर में श्री लाल बहादुर प्रसाद जी हैं जो सामूहिक कार्य के लिए रेडियो रिमझिम में सूचना दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपके पंचायत की जो सड़क टूटी है वह जल्द से जल्द बनेगी और जो पुल भी टूट गया है वह भी बनेगा। बस अपने साहस को कम मत कीजिए, सही जगह पर सही बात को पहुंचाते रहिए। यदि हम किसी होटल में जाते हैं और खाना में यदि मक्खी गिर गई तो हम जो है बैरा से नहीं बोलेंगे, उस होटल के मैनेजर से बोलेंगे ताकि वह जो है अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करे। तो यदि सही बात सही जगह पर पहुंचाई जाती है तो उस समस्या का समाधान होता है। आप हमारे आदरणीय श्रोताओं में से एक हैं और विशेष करके आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आपका संदेश आते रहता है। यह एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है जिसका निर्वहन आप करते हैं। हम इसका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र का जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान होगा। रेडियो रिमझिम परिवार से जो स्नेह का डोर, दिल से दिल का डोर आपने बांधा है, इसे और मजबूत कीजिएगा। हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार सिंह कोन्हवा से भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम और हालचाल काफी अच्छा लगता है। मेरा सुझाव है कि आईपीएल का न्यूज भी समय समय पर दिया जाए। हम चाहते हैं ऐप के माध्यम से आईपीएल के बारे में बताया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, कोन्हवा मोड़ के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम के शुरू में ही मैंने कहा कि जो हमारे श्रोता हैं वे ही हमारे अस्तित्व हैं, हमारी पहचान हैं, हमारी दुनिया हैं। वे हमें सुनते हैं, समझते हैं, अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। यह तालमेल जो है भारतवर्ष के किसी रेडियो स्टेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेडियो रिमझिम ने एक नया आयाम गढ़ा, एक नया पैमाना तय किया कि हमारे श्रोता अपने बातों को बेझिझक होकर हम तक पहुंचाएंगे और हम उस पर कार्य करेंगे। और आपने ऐसा ही किया। आपका जो सुझाव है, हम अपने युवा साथियों से जो रेडियो रिमझिम की टीम है इस पर चर्चा करेंगे। यदि संभव होगा तो वे लोग जरूर आईपीएल का समय समय पर सूचना देते रहेंगे ऑनलाइन कार्यक्रम करते समय, ताकि आपको हमेशा अप टू डेट हम रख सके। यही मेरा कर्तव्य भी है। आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
3: जी सर। अगला संदेश पहुंचा हुआ है भीतभेरवा गोपालगंज से उमेश राम जी का। लिखे हुए हैं, रेडियो रिमझिम हमारे पंचायत में है, सभी कार्यक्रम मनमोहक होते हैं, हालचाल बिरहा हेलो माय चॉइस समय से चलता है, अच्छा लगता है। सुबह का भक्ति गीत भी बहुत अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, भीतभेरवा पंचायत के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जब कोई हमारी प्रशंसा करे, बड़ाई करे, और यह मनुष्य का गुण होता है कि अपनी प्रशंसा सुनकर वह खुश होता है। साथ में यह कर्तव्य भी होता है कि यदि हम किसी कार्य में उसके शिखर पर हैं, तो वह हमेशा बने रहने के लिए हमें लगातार परिश्रम करना पड़ता है। बहुत अच्छे दार्शनिक ने कहा है कि किताबों की शिक्षा ज्ञान का विकास करती है, लेकिन जो बड़ों की शिक्षा होती है वह बुद्धि का विकास करती है। इसलिए हमें भी काफी अच्छा लगा कि हमारा सारा कार्यक्रम शेड्यूल से चलता है और आप लंबे समय से सुन रहे हैं। लेकिन मेरी भी एक शिकायत है, हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता हैं जो हमें सुनते हैं, लेकिन कभी कभार आपका संदेश मिला में अपने संदेश को भेजते हैं, और कुछ ऐसे शानदार और जानदार श्रोता हैं कि प्रत्येक सप्ताह अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। उन सभी श्रोताओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जो भी प्रसारण करते हैं वह आपके विचारों पर, सुझावों पर और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की सोच जो है एक साइड में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब अपने बातों को हमको किसी न किसी माध्यम तक पहुंचाते हैं तो बड़ा ही बेहतर होता है। हमें आज भी याद है, शहाबुद्दीन टोला देवापुर के एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक दिन वह अपने झोला में दिखा रहे थे कि देखिए अभी अभी हम बाजार से रेडियो बनाकर ला रहे हैं।

0: बना ले ताकि बिजली के लाइन पर चलता रहे। और आजकल जो रेडियो मिस्त्री हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था रेडियो में रखे हैं कि अगर बिजली का लाइन कट भी गया तब पर भी रेडियो बजते रहेगा। हमने उन्हें भी यह सुझाव दिया था। जीवन का एक दौर ऐसा आता है कि व्यक्ति तन्हा हो जाता है, उस समय जो है रेडियो ही एक सहारा बजता है जिससे हम अपने दिल की बातों को सुनते हैं, मन की बातों को सुनते हैं। व्यक्ति बचपना में चला जाता है, जवानी में कमाई के फेर में चला जाता है और जब तक बच्चे बड़े होते हैं व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और बच्चे अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं और वयोवृद्ध व्यक्ति जो है तन्हा और अकेला हो जाता है। उस समय रेडियो जो है उसका सच्चा साथी होता है। कई ऐसे हमारे आदरणीय श्रोता हैं जो रेडियो पर हाल चाल सुनने के लिए बेताब रहते हैं। कभी कभार यदि 2 मिनट 1 मिनट लेट हो गया तो रेडियो रिमझिम के कार्यालय में फोन करके पूछते हैं कि 3 मिनट लेट हो गया, अभी तक नहीं चला। तो उन तमाम श्रोताओं का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं कि आपकी तीव्रता के वजह से हम भी तीव्र हो जाते हैं। व्यक्ति यदि काम करता रहे तो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। व्यक्ति बूढ़ा कब होता है? जब उसके बच्चे उसे बूढ़ा घोषित करने लगते हैं, दबाव देने लगते हैं, उसे तन्हा छोड़ देते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वे अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं। व्यक्ति काम करते रहे, परिवार से जुड़ा रहे, हमेशा युवा रहेगा, हमेशा जवान रहेगा और अपने काम को नियमित और समय से करे तो और भी बेहतर होता है। जीवन में काम कभी खत्म नहीं होता है लेकिन इंसान खत्म हो जाता है। जो काम हमारे पूर्वज छोड़ जाते हैं उसे आने वाले पीढ़ी करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखे, कभी भी कोई विवाद, कोई कर्ज अपने जीवन काल में अपने बच्चों को प्रेषित न करे, क्योंकि उसे भी उस लड़ाई में उतरना पड़ेगा, उसका भी जीवन जो है हमारे आपके तरह झंड हो जाएगा। इसलिए कर्ज और विवाद अपने बच्चों से दूर रखें और अपने जीवन काल में ही उसे समाप्त करें, यही सबसे बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, प्रीति कुमारी आरआर मोड़ गोपालगंज से भेजी है। मुझे आपका संदेश मिला कार्यक्रम काफी अच्छा लगता है, इस कार्यक्रम से प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलता है, ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया जाए काफी अच्छा होता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय प्रीति जी, आपके माता पिता को, आरआर मोड़ के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम कहाँ कब सीखते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य का जीवन इतना लंबा नहीं दिया है कि वह स्वयं गलती करे और स्वयं सुधार करे। इसका सीधा और सरल उपाय यह है कि यदि दूसरा कोई गलती किया है तो उसके गलतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो है उस तरह की गलती अपने जीवन में नहीं करें। जीवन में हमेशा शिखर पर रहने के लिए निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम घर बनाते हैं तो अगल बगल के लोग जो है परेशानी में डाल देते हैं, हम कक्षा में खूब मन लगाकर पढ़ते हैं, खून जलाते हैं, उसके बाद भी अच्छा अंक नहीं मिलता है। कभी कभी यह लगता है ये हम ई रिक्शा चलाते हैं, सुबह से शाम घूमते रह गए, आज रविवार था सवारिये नहीं मिला। यह सब चिंतनीय विषय जरूर है लेकिन ऊपर वाले ने जब आपको एक अवसर दिया है तो कोई न कोई रास्ता देगा। हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप सही हैं, सच्चे हैं, काम के प्रति वफादार हैं तो आपकी वफादारी का फल जो है अवश्य मिलेगा। हमारे देश के राष्ट्रपति

0: एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, समस्या को हमें हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवन को, उनके आत्मकथा को हिंदी रूपांतर में हम पढ़ेंगे तो हमें जो है बहुत सारी ज्ञान की अनुभूति होगी। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद हैं, दशरथ मांझी जी हैं, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन अपने जुनून से पूरे देश का हीरो बने, गौरव बने। इसलिए व्यक्ति को काम के प्रति जुनून रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, काम नहीं है। आप जब गांव में जाइए तो गेहूं काटने वाला लोग नहीं मिल रहा है, काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, सारे लोग जो है विदेशों में प्रदेशों में निकल गए हैं। तो व्यक्ति जो काम करने वाला है पक्षी के तरह कहीं ना कहीं दाना चुनने निकल जाता है, और जो काम करने वाला नहीं है वह कहीं भी रहेगा उसे काम ही नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमारे देश के पूर्वजों ने कहा है कि परिश्रम का सदैव पूजा होता है और परिश्रम करने वाला सदैव विजयी होता है। अपने आप को हमें कार्यों में ढालना होगा और नींद को कम और मोबाइल को कम चलाना होगा। यदि हम मोबाइल कम चलाएंगे तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। आज के दौर में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि एवरेज औसत एक युवा जो है 6 से 8 घंटा 10 घंटा मोबाइल में अपना समय दे रहा है, लेकिन वह यदि पुस्तकों को पढ़े, वह जो है अच्छे अच्छे समाचार पत्रों को पढ़े तो उसके ज्ञान में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगा। संसार का कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है अधिकारी वर्ग का जिसमें इंटरव्यू न होता हो। आप रिटेन में कितना हूँ लिख पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आपका सामान्य ज्ञान मजबूत नहीं है तो जीवन में बेहतर बनने में परेशानी होगी। तो विशेष करके जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपना जीके सामान्य ज्ञान मजबूत रखना पड़ेगा ताकि अगला जो है आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज को चेक करता है, और जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है वह काफी अनुभवी व्यक्ति होता है। विशेष करके वह लोग वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं जिन्हें जिंदगी के खट्टे मीठे चीजों का अनुभव होता है, और आप यदि इन सब चीजों का तैयारी करते हैं तो अच्छे से अच्छे पद को डिजर्व करते हैं और आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है सासा मूसा से जाकिर हुसैन जी का। रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा सलाम। मैं रेडियो रिमझिम का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम सुनता हूँ। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम चलाया जाए, सुबह का विषय सूची भी बताया जाए जो पहले बताया जाता था, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय जाकिर हुसैन जी, आपके पूरे परिवार को, सासा मूसा के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जो पुरानी बातों को याद रखे और हमें भी याद कराता रहे। आपने जो विषय सूची की बात की वह पिछले 2 साल से हम प्रसारित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे अत्यंत पुराने श्रोताओं में से एक हैं। आपको आज भी याद है कि सुबह 7 बजे के पहले हम पहले रेडियो पर बताते थे कि आज सारा दिन कौन सा कार्यक्रम कब कब प्रसारित होगा, जिसका विवरणी हम देते थे, और वह विवरणी पिछले 2 साल से नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपको धन्यवाद हम इसलिए दे रहे हैं कि हम भूल गए लेकिन हमारे परम आदरणीय श्रोता नहीं भूल पाए। दूसरी बात जो आपने रखा रखा ऑनलाइन कार्यक्रम का, उसे हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन कार्यक्रम नियत समय से चल रहा है और इस सप्ताह से बहुत सारे रिकॉर्डेड कार्यक्रम जो है बहुत ही बेहतर से बेहतर है, जिसे हम प्रसारित करने जा रहे हैं सुबह और शाम, उसे आप जरूर सुने। आपको पता ही है कि राष्ट्रीय समाचार सुबह 8 बजे, दोपहर 2:15 पर और रात में 8:45 पर, और फिर रात को 11 बजे हम प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में करते हैं, ताकि पूरे दुनिया का सूचना हमारे आदरणीय श्रोताओं के पास पहुंचे। आपने जो पुरानी बात हमें याद दिलाई, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और नए कार्यक्रम आप कौन सा सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। हम जो है आपके विचारों का, आप जैसे श्रोताओं के विचारों का भूखा प्यासा रहते हैं। हमें भी लगता है कि कई बात हाथ से निकल जाता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो देश दुनिया के कोने कोने में हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के श्रोता हैं, हमें याद दिलाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके लिए हम आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है शीतल बरदाहा गोपालगंज से अखिलेश कुमार जी का। रेडियो रिमझिम के सभी बड़े जनों का मेरा प्रणाम नमस्कार है। बचपन से आज जवानी तक गोपालगंज का हालचाल रेडियो रिमझिम के माध्यम से सुनता हूँ। अभी मैं पटना में जॉब करता हूँ। घर की याद आने पर रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, काफी अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। अभी तो संदेश कई है, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम से निकलना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्र के निवासियों को, बिहार की राजधानी पटना में जहां भी आप कार्य करते हैं, आपके सभी साथियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब बचपन से जवानी तक रेडियो रिमझिम को सुनते आए हैं, यह बातें भाव विभोर कर देती है। हमें भी अच्छा लगता है, कई बच्चे जो है रेडियो रिमझिम के हेलो क्विज कॉन्टेस्ट कार्यक्रम में भाग लिए थे, और आज जब कभी कभी आपके संदेश मिला में वे संदेश देते हैं कि हम कर्मचारी बन गए, सरकारी पदाधिकारी बन गए, स्वच्छता में गए, अन्य कार्यक्रमों में गए, तो यह सुनकर मन जो है आनंद से भाव विभोर हो जाता है। रेडियो रिमझिम उस दौर में आया जिस दौर में बिजली का अभाव था, सूचना मिलने का अभाव था, उस दौर में रेडियो रिमझिम ने अपना प्रसारण शुरू किया। जिस हालचाल या समाचार को जानने के लिए हमें समाचार पत्रों को खरीदना पड़ता था, वहाँ निशुल्क जो है रेडियो रिमझिम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। एक बात हमें याद आया, एक श्रोता ने बताया था कि रेडियो रिमझिम के नाम से हालचाल गोपालगंज जो न्यूज आता है उसमें वीडियो डाला जाए, और हमने उस श्रोता से कहा था कि हर मोबाइल में 1.5 से 2 GB हमें जो है डाटा मिलता है, यदि हम वीडियो डाल दें 10 मिनट का, आप देखते रह जाएं, तो 1.5 GB डाटा जो है आपका खत्म हो जाएगा जो 24 घंटा चलाना है। इसलिए हालचाल गोपालगंज को ऑडियो के माध्यम से हम देते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब भी अपने गांव जवार या घर की याद आती है रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं। हमें भी काफी अच्छा लगा। रेडियो रिमझिम में जो आरजे हैं स्थानीय स्तर के हैं, जो बातचीत होती है भोजपुरी हिंदी मिक्स रहता है, जो सुनने में भी और समझने में भी काफी अच्छा लगता है, और गीत संगीत और कार्यक्रमों को हम लोग सुनते रहते हैं। तो यह सब चीज जो है रेडियो रिमझिम को बेहतर बनाता है। हम लोग बस यही ध्यान देते हैं बोलते समय लिंग वचन सही और शुद्ध हो और ऐसी सहज और सरल भाषा का उपयोग किया जाए कि एक आम आदमी से लेकर एक पदाधिकारी तक हमारे बातों को उन तक पहुंच जाए। भाषा जो है एक संकेत है जो अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम एक दूसरे के पास प्रेषित करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपका जो प्रेम है, जो आपका अनुभव है, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आपने शामिल किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके तन्हाई का साथी रेडियो रिमझिम सदैव बना रहेगा। और आपको जानकारी दे दें, रेडियो रिमझिम के नाम से यूट्यूब फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यह सब है। और बदलते दौर में व्यक्ति को सीखना पड़ता है। कई लोग हमारे पास फोन करते हैं कि सर इस कार्यक्रम का कौन सा नंबर है, इस कार्यक्रम का कौन सा नंबर है। रेडियो पर तो बताया ही जाता है, लेकिन रेडियो रिमझिम के नाम से जो फेसबुक है उस पर एक पोस्टर लगा दिए हैं कि एसएमएस का यह नंबर है, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का यह नंबर है, हेलो माई च्वाइस का यह नंबर है, ताकि आपके मोबाइल में ही हर चीज उपलब्ध रहे, हमें कहीं कुछ खोजना नहीं पड़े। जब कभी दूसरे प्रदेशों से लोग फोन करते हैं और हम पूछते हैं कि यह नंबर आपको कहां से मिला, तो वे लोग बताते हैं कि रेडियो रिमझिम का फेसबुक से हमें आपका कार्यालय का नंबर मिला। तो बदलती दुनिया में हमें भी बदलना है। आपको बताते चले, जब मेरा उम्र 54-55 वर्ष हुआ उस समय जो है हमें कंप्यूटर सीखना पड़ा, ईमेल कैसे भेजा जाता है मंगाया जाता है वह सीखना पड़ा, और छोटी छोटी बारीकियां रेडियो प्रसारण के लिए या संचालन के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए उस पर हमने भी ध्यान दिया। और यह हम भी कोशिश करते हैं कुछ नया रोज सीखे। कभी आदरणीय अधिवक्ता गण के पास बैठते हैं, कभी किसी शिक्षक के पास बैठते हैं, कभी किसी पदाधिकारी के पास, कभी किसी किसान के पास, कभी किसी जुडिशियल अधिकारी के पास। यह जो अनुभवी लोग हैं, उम्र उनका चाहे कोई भी हो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने और समझने की को मिलता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग जो है जब आप विकास के दौर में आगे जाइएगा तो उन्हें जलन होगा, उन्हें ईर्ष्या होगा, आप घर बनाएं, गाड़ी खरीदें, पत्नी के लिए गहना खरीदें, आप अपने मेहनत से कीजिएगा, लेकिन उनके अंदर जलन होगा, ईर्ष्या होगा। यह जो है पैमाना बताता है कि आप जीवन के दौर में उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और जब तक विरोध ना हो तब तक जिंदगी का मजा ही नहीं आता है। जिस तरह हवा जो है कितना ही दबाए आपको आगे बढ़ना है, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाइएगा तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस अपने जीवन का दिशा तय रखना है, लक्ष्य स्पष्ट रखना है। रेडियो रिमझिम हर पल हर जगह आपके साथ है, और हम लोगों ने जो एक स्नेह का डोर प्रेम का डोर बनाया है उसे हम बनाए रखेंगे। अब अंत में हमें भी जाने की इजाजत दीजिए। आप अपने अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, तरह तरह की बीमारियां आज के दौर में आ रही है, उससे बचना है और स्वस्थ और लाभदायक जीवन बिताना है। इसी के साथ आप सभी को एक बार हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
10: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
9: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
9: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
11: सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
13: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
14: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
13: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
14: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331।
15: अब से विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
16: नमस्कार,
15: नमस्कार।
16: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
17: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रांगर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
18: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
17: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
16: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
19: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
16: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
20: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
21: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
20: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
16: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
22: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
16: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
23: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
16: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
24: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
16: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
0: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिन्दुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्यबल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
16: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
25: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
26: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
27: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
28: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
29: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
30: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
29: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
30: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
29: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
31: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
31: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश जाता है।
31: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे

0: नाजी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87894 18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के

0: देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
12: से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी पटना समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
13: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
12: भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये समाचार प्रादेशिक समाचार एकांश के YouTube चैनल AIR News_Patna पर भी उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
14: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
12: राज्य में बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। इसके तहत बालू पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
15: नियमावली के तहत पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने में जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहने पर जिलाधिकारी को अस्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने का अधिकार दिया गया है। नियमावली के प्रावधान के तहत लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे और ढके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति ट्रैक्टर 5,000 जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25,000 जुर्माना वसूला जाएगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे GPS डिवाइस से छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना।
12: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम से 80 अग्निशमन वाहनों और AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जलाशयों के आसपास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इको टूरिज्म की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। श्री चौधरी ने पर्यटन के विकास के अन्य संभावित क्षेत्रों पर भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। पटना के लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गोवा, महाराष्ट्र और सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तीनों राज्यों के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को प्रत्येक राज्य के विशेषताओं को जानना जरूरी है, इससे हम अपने देश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान शराब पीने के मामलों में 1,28,470 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें पटना जिले में सबसे अधिक 15,675 जबकि शिवहर में सबसे कम 1,078 लोग गिरफ्तार हुए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि शराब बिक्री और सेवन के मामले में 9,41,857 छापेमारी हुई। वहीं 1,07,851 केस दर्ज हुए। बीते वर्ष 47,06,391 लीटर शराब जब्त हुई। श्री सहनी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े 10,428 वाहन जब्त किए गए। प्रदेश में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रावधानों को थाना स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इससे संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो इसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए डाटाबेस को अपडेट रखना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 18 मई राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.8, कैमूर का 42.6 और शेखपुरा का 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 41.7 तथा गया, पटना, जीरादेई और जहानाबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक की कक्षाओं को दिन के 11 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र इसके दायरे में आएंगे। यह आदेश 21 मई तक लागू रहेगा। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही चौकबनी से देवघर के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत होगी। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चौकबनी कटिहार मेमू सेवा की भी शुरुआत होगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से 34 मीटर के दायरे में ही रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। पहले यह दायरा 500 मीटर निर्धारित था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी सेतु निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।
2: मनिहारी साहबगंज जो पुल बन रहा है वो दोनों राज्यों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसका हम लोग रेगुलर रिव्यू भी करते रहते हैं। पीडी साहबगंज के द्वारा इसमें बताया भी गया है रिव्यू में कि इस साल के अंत तक दिसंबर 2026 तक ये पुल का उनका पूरा करने का प्लान है और उसी हिसाब से कार्य योजना बना करके वो लोग काम कर रहे हैं। इसकी हम लोग समीक्षा साप्ताहिक रूप से PMG की बैठक में करते रहते हैं और उम्मीद है कि ये पुल दिसंबर तक बन जाएगा तो लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क में कमी की है। CBSE ने शुल्क को 700 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं तो उसे शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बकरीद का त्यौहार 28 मई को मनाया जाएगा। पटना स्थित इमारत शरिया और मरकजी मजलिस रुयते हिलाल खान का मुजीबिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बकरीद का चांद नजर नहीं आया, इसके चलते 19 मई को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी भभुआ सासाराम पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आज सुबह आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जनरल बोगी D3 में चलने की गंध महसूस हुई, इसके बाद बोगी के भीतर धुआं पड़ने लगा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव के पास 12 चट्टी विधायक ज्योति देवी के साथ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया, साथ ही उनके सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई भी की गई। विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में 7 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में कनकई नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं सहरसा जिले के नवहट्टा में कोसी नदी में नहाने के दौरान 2 किशोरियों की डूबने से मौत की खबर है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी महुआगाछी में अपराधियों ने एक CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 1,32,00,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राजगीर में एक माह तक चलने वाले मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मलमास मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दैनिक जागरण लिखता है, अदानी समूह बिहार में अगले 2 से 3 साल में 50 से 60 हजार करोड़ का निवेश करेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, बेगूसराय में देशव्यापी साइबर ठगी का खुलासा, एक अकेले खाते के खिलाफ 205 शिकायतें। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, रेडीमेड गारमेंट ठप बना पूर्वी चंपारण, कपड़ों की 493 फैक्ट्रियों ने बदली चंपारण की तस्वीर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, देश के 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, पारा 40 डिग्री के पार। आज अखबार लिखता है, सूबे के सभी 534 मॉडल स्कूल 20 मई से चलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5,00,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003। सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
2: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम, कैसी हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: बस काम हो रहा है। गाना सुनना था।
2: जी बिल्कुल, बता दीजिए गाने का नाम।
1: अदनान सामी का गाना है, तेरा चेहरा जब नजर आए।
2: सुनवाना भी है?
1: हाँ, वाइफ को डेडिकेट है ये गीत और बाकी सारे लिसनर्स को।
2: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना।
1: नाम नहीं पूछिएगा?
2: नील बात कर रहे हैं छोटपुर से।
1: हाँ अनिल बोल रहे हैं
2: जी।
1: ठीक है तो प्ले कर दीजिएगा।
2: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सोने कॉल किए।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
0: हाँ मैडम, ठीक है, गाना सुनना है।
1: जी, गाना सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से।
0: मेरा नाम है मनोज कुमार।
1: जी, कैसे हैं मनोज जी?
0: ठीक है
1: जी। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मुंगेर से बात कर रहे हैं, हवेली खड़गपुर।
1: अच्छा,
0: राम गोबड्डा।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: गाना सुना दीजिए आप शारदा सिन्हा का, कोई विवाह गीत, अभी विवाह का टाइम चल रहा है ना, शारदा सिन्हा का विवाह।
1: जी जी, और सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है सरिता देवी, बरखा कुमारी और आपको।
1: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमे

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
14: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
13: Bhage bhage firte hain.
15: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो,
12: सलामकुम।
16: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: मैं अहमद अली सर, आवाज नंबर 1 है
16: जी। का हाल चाल बा अहमद जी?
12: ठीक बा जी, अपन बताए बारिश में कैसा लागत है?
16: अरे का बताए कैसा लागत है, जैसे अंदर पाँव धैनी तले बारिश तेज हो गए, खुला लाटन 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
12: भाग मनाई की पहुँच गई नहीं है, आइयो ना कोई दिन
16: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
12: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है, लेकिन उठा नहीं है ना।
16: अरे जैसे आके चालू कर ले रहे अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
12: हम कहीं हमारा पर अपना जुलूम का है होता, पूछे मम्मी से।
16: ना ना जुलूम नहीं होते, बस चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल भाई की जाए।
12: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
16: ना लागल।
12: 126 बार डायल कर ले बनी।
16: अच्छा अच्छा चले लाग गई ना। आज गाना कौन सा बता दी?
12: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से, बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में। सुनाने के बाद सबसे पहले क्या है, आस्तरी के कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के, और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
16: आज बाजी, आज शाम के 5 बजे के बीच में आई।
12: ठीक बा
16: जी,
12: चलिए शुक्रिया
16: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
12: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
9: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
11: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
12: भागे भागे फिरते हैं।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
15: हम किस्मत बोल रहे हैं शिमला से।
14: जी क्या हाल चल रहा दादाजी?
15: मैं ठीक ठीक बनू।
14: जी जी बिल्कुल बढ़िया बनी।
15: अच्छा बारिश हो रहा बा?
14: जी काफी तेज बारिश हो रहा बा। तो खाना पीना हो गल बा?
15: हाँ खाना पीना हो गल बा। बारिश हो रहा
14: तो बता दी कौन गाना सुने के बा?
15: कौन सुनी ले?
14: अच्छा हाँ कव्वाली तो सुने नहीं, तो बता दे कव्वाली के नाम।
15: अपना मन से बोलिए बजा दिए पूरा।
14: अच्छा ठीक बा।

0: हाँ जी, मैं लाल बाबू सिंह नवादा सहार भोजपुर से बात कर रहा हूँ
1: जी। क्या हाल चाल है लाल बाबू जी?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे।
1: बिल्कुल बढ़िया है
0: जी। हम गाना सुनना चाहते हैं, राना जी माफ करना
1: जी, और सुनाना भी है
0: जी। सभी रेडियो इंजन के श्रोतागण को सुनाना चाहता हूँ
1: जी जी। और क्या करते हैं आप? सो मैं पहली बार कॉल किए हैं
0: जी। मैं एक्सेलेटर मशीन चलाता हूँ, पोकलेन किसी भाषा में बोले तो पोकलेन चलाता हूँ। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। यहीं से रेगुलर को सुनते रहता हूँ।
1: मतलब हेलो माय चॉइस में कॉल आपका पहली बार है
0: जी? कॉल पहले भी किए हैं लेकिन एक दो साल पहले किए।
1: अच्छा,
0: अभी तक नहीं किया था कुछ दिन।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी
0: जी। जी जी ओके, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुने कॉल किया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
6: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
3: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
6: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
6: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
7: Pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
9: The phone ring, they watch the head, don't get the head.
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: नमस्कार।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
11: बहुत बहुत स्वागत है।
12: लाल बहादुर बात कर रहे हैं?
11: हाँ जी।
12: कैसे हैं?
11: ठीक है मैम भाई, इधर तो बारिश हो रहा है।
12: अरे पूछिए मत, कितना बारिश हो रहा है इधर।
11: आपका तरफ हो रहा है उधर?
12: बहुत तेज।
11: मौसम कुछ रोके कुछ इधर उधर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है कि नहीं? 18 जून का ऐसे तो मानसून आता है नियम के अनुसार से।
12: जी जी।
11: और पहले ही बारिश 2 तक दे चुके हैं, वर्षा हो रही है, इसके ख्याल में आप लोग क्या विचार है, क्या सावधानियां बरतना चाहिए? बारिश वाला गाने को सुना दीजिए।
12: बारिश वाला?
11: हेलो
12: जी।
11: बरसात के मौसम में तेलंगाना सुनाई के आलम में हेलो
12: बोल रहे
11: हैं हमारे जितने भी स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं ग्रामीण से और शहरी निगम निकाय से सोसाइटी और हमारे भारत वर्ष में आपको प्ले कर रहे हैं गाना आपके जी बहुत बहुत धन्यवाद
12: आपका सोने कॉल किया।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम में। बदल की वो चार एफ एम में।
0: क्या हाल चाल? मैं लाल भाई बोल रहा
1: था। जी बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक
1: हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: पूरा अरे बारिश में बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना है सवेरे संयोजा बजरिया, भक्ति गाना है
1: जी। और सुनवाना भी है?
0: बजरिया है, रूबी है, सुनना है और रजेश संजय है।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: ठीक है, सोनी बोल रहे क्या?
1: जी जी
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
14: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87894-18744।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमटिम 90.4 FM में।
17: सुनी जी, पहचाना क्या है?
18: जी गोपाल रॉय।
17: फोन से तो आपसे बहुत दिन हो गया, बात नहीं हो रहा है।
18: जी जी, कॉल पे बात नहीं हो रही है, शो में आते हैं आप।
17: हाँ बोलिए।
18: बोल रहे शो में आते हैं, लाइव शो में।
17: वही तो, वो प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, घर में सभी सुनते हैं। अच्छा, आप कैसे हैं बोलिए?
18: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे?
17: अच्छे। तो अभी तो मैं दुकान पे हूँ, दुकान पे गाना सुन रहे हैं और फोन में इसलिए फोन कर रहे हैं। आपका फोन ये लाइन कभी कभी बंद रहता है क्या? बोलिए तो
18: ये 3 दिन सप्ताह में खुलता है 11 बजे से, बाकी दिन बंद रहता है
17: ना। एक अगला एक हफ्ते के आगे ना वही हफ्ते में एक दिन बंद ही था।
18: जैसे सोमवार को खुलता है 11 बजे से और 12:30 बजे तक चालू रहता है, फिर बंद हो जाता है ये फोन।
17: अच्छा अच्छा अच्छा
18: जी। और फिर उसके बाद खुलेगा बुधवार को।
17: ओ अच्छा अच्छा अच्छा।
18: फिर उस दिन 1.5 घंटा चालू रहेगा 11 से 12:30, फिर बंद रहेगा और फिर शुक्रवार को खुलेगा 11 से 12:30।
17: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
18: टाइमिंग रिकॉर्डिंग का वो अपना टाइम में ही खुलेगा, बाकी टाइम बंद रहता है।
17: ओ अच्छा अच्छा। आपका प्रोग्राम तो पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं, सभी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका।
18: और भी कोई सुनता है क्या वहाँ?
17: हाँ मेरा घर पे सुनते हैं, मेरा दुकान पे आसपास में कोई हुआ है ना वो भी लोग सुनते हैं।
18: अच्छा।
17: तो बोल रहे की आजकल तो किशोर कुमार का गाना बजा दीजिएगा।
18: जी बता दीजिए किशोर कुमार का कौन सा गाना सुनिएगा?
17: राजपूत मूवी का है ना मेरे संगे संगे आए तेरी, वो गाना तो है
18: जी जी,
17: बजा दीजिएगा।
18: और डेडिकेट भी करिएगा।
17: हाँ आपको आपको रिलीजिंग परिवार के सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हूँ, सभी सुन रहे
18: गाना आपके।
17: अच्छा अच्छा। ये गाना कब सुनेंगे?
18: आज शाम को आज या कल में 5 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाएगी, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, आधा आज चलेगा और आधा कल चलेगा।
17: ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ।
18: तो अगर आज आपका गाना 5 से 7 के बीच में शाम को नहीं बजा तो इसका मतलब है कल पक्का है कि बजेगा।
17: ओ अच्छा अच्छा। ठीक है, गाना तो रेडियो में गाना सुनने में मजा ही अलग होता है ना।
18: और इसका रिपीट चलता है 9 से 11 के बीच में।
17: क्या बोले?
18: जैसे 5 से 7 के बीच में अगर आप नहीं सुन पाते हैं
17: अच्छा,
18: तो नेक्स्ट डे आप 9 से 11 बजे के बीच में सुबह सुन सकते हैं।
17: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
18: रिपीट चलता है।
17: अच्छा अच्छा ठीक है सुनी जी। ठीक है, आपका पढ़ाई चल रहा है क्या?
18: जी जी अभी तो चल रही
17: है। अच्छा अच्छा ठीक है।
18: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये है बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
11: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत में। बहुत बहुत प्यार है हमें।
3: मैडम जी
10: नमस्ते। तो कैसी है नेहा जी, बताइए।
3: अच्छा है, आप बताएं कैसे है। नाश्ता हो गया
10: जी? हाँ हो गया है। आपका हुआ?
3: हाँ हाँ हो गया।
10: तो अभी क्या हो रहा था?
3: अभी तो आपके पास फोन लगाए है तो कुछ बिजी बता रहा था, अभी लग गया।
10: तो आज गाना कौन सा सुनना है आपको?
3: गाना सुनना है लैला ने कहा मरी मेरा गाना ही।
10: और सुनवाना भी है
3: जी आपको? आज इतना रेडियो रिमझिम आर्जे है, दोस्त सब सुनता है उसको, सभी के साथ।
10: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आपके।
3: जी मैडम जी नमस्ते।
10: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने कॉल की।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: प्रणाम मैडम।
12: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: जी मैडम
12: जी, नाम बता दी आपका।
11: सुनने के बाद महेश शर्मा।
12: जी जी, तो कौन गाना सुने के बाद बता दी।
11: गाना सुने के बाद दुपट्टा मौसी के, मौसी वाला गाना ना निकल हुआ।
12: कौन गाना?
11: दुपट्टा मौसी के निकल हुआ गाना ना।
12: दुपट्टा मौसी के हमके ना पता बा, गाना बढ़िया बा, सुन ले बने।
11: सुन ले बने ललका दुपट्टा मौसी के।
12: अच्छा, और सुनवाई के भी बा।
11: जी जी, गाना सुनने।
12: चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कॉल करूंगी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम
0: जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: संजय शाह, फुली डुमर बिहार से बोल रहे हैं, बांका जिला।
0: जी क्या हाल चल रहे हैं?
1: ठीक है।
0: तो क्या हो रहा था?
1: गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल,
1: साड़ी का मोती है घड़ी के।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे गाना, नाम बता दीजिए गाने का।
1: संजय, साड़ी का मोती है घड़ी के, भोजपुरी सॉन्ग है।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: हाँ आपको सुनवाना है और जाके जो है जितना सरोता गण है सबको सुनाना है।
0: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
1: प्ले कीजिए। ठीक
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

हेलो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
1: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
9: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
9: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
9: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत हुई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: रामू हरिया, कल तैयार रही लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी देके।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ये चांद सा रोशन

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
4: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
2: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन मटन दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा बर्गर चाट।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
5: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिया लो, परारी जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
2: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
2: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
2: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम सुनो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: बस रोक।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
8: भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा कैमरे से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाँव पर ताली, भौजी

0: रोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
7: किस बात से डर रहा है यार? एज डिफरेंस। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
4: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
2: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
2: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
2: जहां हर निवाला कहे वाह।
5: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166064498 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी

0: प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
1: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। और

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करत आनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए चले के बा।
2: ठीक बा भैया।
3: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
4: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
3: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
4: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
3: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
4: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी देके।
3: याद रखी ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरूआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्त।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
4: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृतकाल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
5: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब यह 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
6: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: 40 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894-18744।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
10: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: तोहके लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

गीतांजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86 034 48 652 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा? कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

इस संसार भगवान के बनावल एगो अद्भुत रचना बा, जौना में तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदी पहाड़, ई सब भगवान के बनावल बा। इमे मनुष्य जमन शरीर बा, ई सब जूनी से सब प्राणी से सुंदर प्राणी बा ई मनुष्य प्राणी। भगवान के ई कैसन रचना बा भैया, केहू सुखले में रहता, केहू जीवन भर पानी में आपन रह करके जीवन बितावता। एगो भक्त भगवान से कहले कि हे प्रभु, हमनी राउर कर्जदार बनी। कहले कैसे,

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 6200042434।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: All right.

इमें जवन बुढ़ापा अवस्था होला वो बड़ा ही दयनीय अवस्था होला। वह अवस्था में दो चार कदम ठीक से चलल भी मुश्किल हो जाला। आँख से कुछ दिखाई ना देला, कान से ठीक से ना सुनाला, मुंह के दांत टूट जाला। ई अवस्था से हर आदमी के गुजरे के पड़ेला।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
8: प्रीत गईल उरी।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद

0: किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
5: और 90-97-61-60-02।

0: तब रामू काका है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
9: Now pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up,
10: hello.
9: Pick it up,
10: hello.
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम। मैं बदस्मो चार एफ एम में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं मायर एमपी से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से भगवान ने क्या बोले, तू धरती में जाए जहाँ भी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी बारिश हो रही है ना, शायद इसकी वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: ये है कि गेहूं वेहूं का दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे सारी बदरिया, यही
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे वो कारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खास कर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमे कॉल के जी।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
11: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
12: क्यों, क्या हुआ है?
11: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
12: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
11: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
16: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत है आपका रेडियो रिमझिम नंबर से आ रहे सर।
17: सोनी मैम प्रणाम।
18: जी प्रणाम,
17: क्या हाल रहा है?
18: बिल्कुल बढ़िया, रो बताए कैसा बानी?
17: ठीक बानी। आज क्या बात, कभी स्विच ऑफ, कभी नेटवर्क या कभी चालू, क्या हो रहा है?
18: पता ना, बारिश होता तो शायद नेटवर्क इशू हुई।
17: कभी बंद बता रहा है, कभी नेटवर्क
18: ना, रिकॉर्डिंग तो शुरू ही हुआ है 11:05 में बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर बंद चालू बता रहे तो प्रॉब्लम नेटवर्क इशू होगा।
17: तो ये बारिश हो रही है क्या अभी भी?
18: काफी भयानक वाला।
17: अच्छा सब सुनाई कोई सब
18: बढ़िया, धनेश मिश्रा बात करते हैं।
17: हाँ हाँ हाँ हाँ, आई कौनी है भोजपुरी में बात करेगा बात।
18: चलिए बढ़िया बात,
17: लौड़ो भोजपुरी में कमेंट करनी बड़ा बढ़िया लगेगा।
18: अच्छा
17: अभी हमने तो मजबूरी बना कि हिंदी आदमी बोले ला, तो भोजपुरी अच्छा, इतना अच्छा कौन शब्द बा?
18: कोनो भाषा नहीं है भोजपुरी नहीं
17: है, लेकिन मजबूरी बाकी आदमी हिंदी आदत पड़ गई, भोजपुरी बतिया पड़ रहा था हिंदी में आ जाने को।
18: सामने वाला जब हिंदी बोली तो बोले के पड़ जा रहा ड्यूटी में बनी की रूम पे
17: ना ड्यूटी में बनी है हमने सोमवार का छुट्टी
18: आज कौन गाना सुनने को बता दी
17: आज काजल सहनी का सुना दी
18: अच्छा काजल सहनी के
17: और दाग गहरा मिलल बा प्यार के
18: अच्छा
17: ये आज सुना दी
18: और सुनवाई के भी बात
17: हाँ वही रवि भैया भाभी लिस्नर सुनने वाले सारे को रवि फोन किया था कि नहीं
18: ना अभी तो रवि फोन ना के लिए रही है
17: गाँव में भेज ना
18: अच्छा तो ये बात तो ना पता बाकी गाँव आवे के बाद अभी बात ना भेज
17: चलिए फिर ढेर बात हो गई
18: जी जी चलिए ठीक बात बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने
2: क्या

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87 8 94 18 7 44।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग शिव मंदिर पोखरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार सोनी जी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
2: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: भैया
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो घर तो पाए, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
2: ठीक है, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
2: शादी वाला और सुनवाना भी है?
1: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
2: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: जी, कुमारी गोपालगंज से।
1: जी, कैसे हैं खुशी जी?
0: अच्छे हैं, अपना बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
0: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
0: गाना बज सकता है।
1: कौन सा गाना?
0: भोजपुरी गाना बज सकता है
1: जी। बिल्कुल बज सकता है भोजपुरी गाना। अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
0: हाँ, यही।
1: अच्छा, और सुनाना भी है?
0: हाँ, जी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको, जितने रेडियो सुने सभी को।
1: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: हाँ, कर दीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: नजरे, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
11: Now pick your phone up.
12: Hello?
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello?
11: Now pick your phone up.
12: Hello?
13: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
12: Hello, hello, hello, hello, hello.
13: Bhage bhage phirte hain.
14: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: हाँ संग

0: तुम्हारा संग ऐसा होता का?
1: जी जी का होता थे बताई।
0: फोन उठा के कट गई है, नेटवर्क
1: ना जी सबके संगे होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवा था तो मैं नेटवर्क था फंसाता थे।
0: हम जाने की हमारे संग होता कभी भरी
1: आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गया अभी बारिश होता।
0: हम नहीं कहता अभी नीचे
1: ना, यहाँ तो होता बारिश खुला ला तो मई जैसे अंदर पैर रखनी फिर बारिश शुरू हो गए। राकेश भारती बात करता नहीं
0: जी। हाँ जी
1: जी तब से बताएं जी
0: तब बढ़िया। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, नहीं पानी हो रही
1: वो दिन तेज जो भई रहे शाम के बारिश भई रहे।
0: हाँ शाम के पूरा टेंट समझाने अपना लोग के लगा रहे
1: सब लेके चल गए।
0: हमने के पूरी खाई बैठल है यार मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर पे खाई नहीं रखा तब तक पतल उतल न उठा
1: बोला की ना खाए दे आज
0: ना खाए के मिलल दिन
1: अब सब उदिया ले गल तो कैसे आदमी खाए।
0: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहे कुन 1 फीट तक पानी लगे रहे तो मैं कहाँ बैठी हम कहाँ खाई है
1: ना खा पाई है सही बात बा।
0: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम छोला ने ओकरा में पानी जगता जगती जो रहे ओकरा में पानी भर गए
1: वही बात बटे खाना भी बर्बाद हो गए।
0: हाँ।
1: तो बता दी गाना कौन सुने के बाद
0: तो सुने के चाहते पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
1: और सुनवाए के भी बा।
0: हाँ सुनवाए का पूरा रेडियो कॉल फैमिली बार हुआ बानी हम बानी अरे घर तो बलिराम जी संगे तनी छटक गई बड़न छटक गई बड़न जानते बने उनका घरेलू मैटर बने।
1: अच्छा अच्छा क्या वहाँ के श्रीमती जी ने की आवेदन का
0: श्रीमती जी कहा था कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहा हमारा संगे कहो रहो
1: ना तो 24 घंटा में 23 घंटा ना तो रखी।
0: हाँ तो अब बाबा जी बार बार हमारे कहे चले जाए बोलन
1: तब तक लड़ाई होके बात बटे
0: वही से लड़ाई हो जाता है। बुध के दिन समझे खेदले बने की तू हमारा संग भाई मत रहा
1: चली बढ़िया कैले बनी
0: बात बनने की हमारा संग रहो हम अपन जहाँ बानी चाहे ठीक बनी हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से मिल ली है
1: जब काम पड़े तब मिल ली है ठीक
0: है काम पड़े तब मिल ली
1: है
0: काम पड़े तब मम्मी के बिना मतलब की हमारा संग रहो भी ठीक नहीं है
1: बिल्कुल।
0: हाँ उनको मेरा भी कहना मिलेगा
1: चलिए ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
2: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
2: जी कैसे हैं मन्नान जी?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
2: जी जी बिल्कुल हो गया है।
1: हो गया कि हो रहा?
2: नहीं नहीं हो गया है
1: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
2: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
1: तो गाना सुना दीजिए मैडम आज।
2: जी
1: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार। हाँ तो गाना हमको वही सुनना था
2: और सुनवाना भी है।
1: और सुनवाना है क्या है? वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोगों को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है ना, आलिया नाम है
2: जी।
1: ना इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने के साथ प्रेमी है लोग सुनेंगे।
2: तो प्ले करे गाना
1: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए, जरा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 104.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे आएगा।
0: और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है,
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक, ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने कॉल।
0: थैंक यू मैम।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए चले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसन का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87894 18744।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम मनोज कुमार
1: जी,
2: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
1: कैसे हैं?
2: ठीक हैं।
1: तो क्या हो रहा था?
2: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
2: देखिए, हमारे गांव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
1: अच्छा अच्छा,
2: इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है। जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर झील, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
1: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
2: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: हाँ हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम।
1: चलिए
2: गाना हमको सुना दीजिए आज।
1: जी,
2: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
1: सुनवाना भी है?
2: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
13: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
14: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
15: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
16: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
17: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
16: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
18: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
19: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
18: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
11: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: Pick it up, hello, now pick your phone up, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, h
0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
20: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
21: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
20: थैंक यू।
21: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
20: जी रियाज अंसारी सिवान।
21: जी जी, क्या हाल चाल है?
20: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
21: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
20: हाँ, मैं बन गया।
21: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
20: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
21: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
20: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, मार करेंगे, मार करेंगे।
21: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
20: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम कॉल किया था आपको, सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
21: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
20: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
21: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
20: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गांव की।
21: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
20: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना?
21: जी, और डेडिकेट भी करिए।
20: हाँ करेंगे, आकाश सैनुल्ला मकान और शहजादी।
21: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
20: और एक बात मैम, कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
21: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
20: नहीं, नहीं, नहीं,
21: नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
20: वो सबसे दूर रहते हम लड़ाई झगड़ा से, क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे हेड सॉन्ग के साथ में ए भी बज जाए, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका क्योंकि हम याद लेते हैं हमेशा मुस्कुराने।
21: जी जी,
20: बस इतना ही, थैंक यू।
21: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी चॉइस में कॉल।
20: थैंक यू मैम,
21: वेलकम।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले हैं
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान

0: है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971660002।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569655।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

और सदा की तरह विक्रम का उत्तर सुनकर इस बार भी बैताल उड़ा और उसी डाल पर जाकर फिर लटक गया। अपनी हट पर अड़ा राजा विक्रम फिर वहां पहुंचा। उसने बैताल को वश में किया और पीठ पर लाद कर ले चला और बैताल ने फिर कहानी सुनानी आरंभ की। ये कहानी थी पर्वतों की गोद में बसे एक राज्य के राजकुमार की, जिसका नाम था जीमूतवाहन।

0: माली
1: जी, राजकुमार जी, ये पेड़ सूखा क्यों है? मैं जब भी इसे देखता हूँ ऐसा ही,
0: न फूल न फल
1: न पत्ते।
2: ये तो वर्षों से ऐसा ही है राजकुमार जी, अगर आप आज्ञा दे तो इसे काट दूं।
1: नहीं नहीं, ऐसा मत करना। आज से हम इसे देखेंगे, आज से हम इसे पानी देंगे, इसे खाद देंगे, इसकी सेवा करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं पनपता है।

0: विमूट वाहन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ विमूट वाहन।
1: ये कौन बोल रहा है? ये किसका स्वर है?
0: मैं बोल रहा हूँ कल्प वृक्ष, जिसकी तुम इतनी दिनों से सेवा कर रहे हो।
1: तुम कल्प वृक्ष हो?
0: हाँ विमूट वाहन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो? ये कल्प वृक्ष तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण करेगा।
1: मैं राजकुमार हूँ, युवराज। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
0: सोचो युवराज, जो चाहो मांगो, यदि अपने लिए नहीं तो अपने परिवार, संबंधी, मित्र, किसी के लिए जो चाहो मांगो।
1: हम राजा हैं और राजा का परिवार उसका पूरा देश होता है। प्रजा हमारी संबंधी है। अगर तू देना चाहता है तो सबके लिए दे, जिससे जिससे सबके दुख दूर हो सके और सब सुखी हो सके।
0: ले विमूट वाहन, सबको सुखी कर, सबका दुख दूर कर। जीवन की महानता स्वयं सुखी होने में नहीं, दूसरों का दुख दूर करने में है। जीवन की महानता स्वयं सुखी होने में नहीं, दूसरों का दुख दूर करने में है।
2: दूसरों का दुख दूर करने में है।
3: दूसरों का दुख दूर करने में है।

0: राजकुमार जी मोतवान की जय। राजकुमार जी मोतवान की जय। राजकुमार जी मोतवान की जय। राजकुमार जी मोतवान की जय। राजकुमार जी मोतवान की जय।
1: नहीं बेटा नहीं।
2: क्यों माँ, इधर नहीं चाहिए क्या?
1: नहीं बेटा, हमारी दौलत तो लूट रही है, हमारी हमारी पूरी जाति पर संकट है बेटा, बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, हमारी रक्षा कर राजकुमार, हमारी रक्षा कर।
2: कैसी विपदा, कौन सा संकट, मैं कुछ समझा नहीं।
1: हम मनालेल पर्वत की घाटी के पास बसे नाग जाति के है बेटा।
2: हाँ?
1: रोज रोज आकाश से साक्षात मृत्यु उतरती है हमारे गांव पर, और किसी न किसी को अपने प्राण देने पड़ते हैं बेटा।
2: रोज मृत्यु उतरती है, प्राण देने पड़ते हैं।

0: एक एक करके हम सब समाप्त हो जाएंगे। इस संकट से हमारी कौन रक्षा करेगा? हम तेरी प्रजा हैं बेटा।
1: घबरा मत माँ, मैं रक्षा करूंगा। मैं कल ही मलयालम पर्वत की ओर जाऊंगा।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6205062112 पे।
11: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
12: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
13: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
12: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
13: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
12: जहां हर निवाला कहे वाह।
14: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
15: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
14: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
14: संपर्क 99393965930।
16: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपका स्वागत है।
1: मैं जान सकता हूँ आपका परिचय?
0: आप है राजकन्या, महाराज ने इन्हें आपके स्वागत के लिए भेजा है।
1: उनसे मेरी ओर से क्षमा मांगिए, उनसे कहिए लौटते समय मैं अवश्य रुकूंगा।
0: एक दिन रुक जाते तो?
1: एक दिन रुकने का मतलब है एक और मौत, किसी अनजान व्यक्ति की मौत। हाँ, यदि संभव हो तो आप मेरी प्रतीक्षा करें।

0: क्या बात है, ये क्यों रो रही है?
1: आज इसका बेटा मरने वाला है।
2: आज इनका बेटा बड़े पंछी का भोजन बनने वाला है।
1: अरे रो के क्या होगा, मरना तो है ही।
0: क्या नाम है इसके बेटे का?
1: शंखचूड़।
0: रो मत माँ, शंखचूड़ से कहना पक्षी का भोजन मैं बनूंगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण। प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन। प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं
1: और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब एक साल का कार्यकाल एनडीए सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे तो लगभग 5,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारवासियों से बिहार लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की सरकार है।
1: बिहार के लोग जो बाहर में हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए और बिहार, क्योंकि जन्मभूमि, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे।
0: प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी। जन शिकायत संबंधी आवेदन देने की प्रक्रिया शिविर के 30 दिन पहले शुरू करने की व्यवस्था की गई है। वहीं शिविर के दिन भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने कल से आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर शिविर के प्रथम दिन सहभागिता देने का अनुरोध किया है। प्रभारी मंत्री और सचिव कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया। उन्होंने कहा कि निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट समय अवधि के भीतर नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
1: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
0: भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी और एनडीए की रणनीति तथा कोर समिति के विस्तार पर विचार किया गया। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आज से प्रदेश भर में जनजातीय गरिमा उत्सव की शुरुआत हो गई है। जन भागीदारी राष्ट्रव्यापी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 25 मई तक विभिन्न चयनित प्रखंडों में शिविर लगाकर जनजातीय समुदाय के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता जैसी योजनाओं से वंचित परिवारों को चिन्हित कर सहायता दी जाएगी। इस कड़ी में रोहतास जिले के 5 प्रखंडों के 19 गांवों में शिविर की आज से शुरुआत हुई। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने उत्सव का उद्घाटन किया।
3: पहले दिन हम लोग द्वारा मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और फिर 19 तारीख से 25 तारीख हम लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे जनजाति बहुल्य गांव में, और हर एक घर में जो भी सरकार की योजनाओं से जो भी वंचित है या बैंक अकाउंट उनका नहीं है तो वो सैचुरेशन मोड में उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये हम लोग का 18 से लेकर 25 तक ये चलेगा। जो जनजाति बहुल्य गांव है हर एक घर में हम लोग के कर्मी जाएंगे और हर प्रकार की जो सरकारी सहायता मिल रहा है, सरकारी योजना चल रही, हर योजना का लाभ हर परिवार को मिले, यही हमारा उद्देश्य।
2: सिवान जिले के आंदर प्रखंड के 31 जनजातीय टोलों में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत घर घर जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर, बरियारपुर और धरहरा प्रखंड के 20 चयनित गांवों में विशेष शिविर के माध्यम से पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य जिलों में भी इस उत्सव की शुरुआत हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं निधि श्री।
0: केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जनजातीय गरिमा महोत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान से आदिवासियों को काफी लाभ होगा। श्री मांझी ने गया के समाहरणालय सभागार में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समूहों के चयनित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना और वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा प्रदान किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी गतिरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद देश में सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार हमारे पास मौजूद है।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस LPG के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है। और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड LPG और नेचुरल गैस का, वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशियंट क्रूड इन्वेंट्रीज है। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के स्टॉक्स
0: हैं। NTPC की बाढ़ इकाई सौर ऊर्जा आधारित नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। NTPC के परियोजना प्रमुख सत्य रामकृष्ण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इसके तहत उपभोक्ताओं को 4 मेगावाट तक सोलर एनर्जी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बिजली को बैटरी में संग्रहित किया जाएगा और जरूरत के अनुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से आज शाम 6:05 पर प्रथम भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री कुमार ने आंचलिक भाषा में समाचार प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
2: बहुत दिन से मांग चलत रहा कि भोजपुरी भाषा में बुलेटिन शुरुआत हो, जौना के शुरुआत आज भइल बा। ऐसे कि जन जन तक की बात पहुंची, अब भोजपुरी बहुत लोग बोलेला, बिहार के साथ साथ विदेश में भी लोग बोलेला। जो काम भइल बा बड़ा बधाई के पात्र बा। भारत सरकार के हम बधाई देते बानी, बिहार सरकार के बधाई देते बानी, आ ये आकाशवाणी के जितना भी अधिकारी लोग बा सब लोग के जो सोच बा और अगर सैल्यूट कर देने कि इतना अच्छा काम के अच्छा से हम सुनने भी है। आज प्रसारण 5 मिनट के बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर आकाशवाणी पटना के केंद्राध्यक्ष HD सिडाम, उप निदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार, समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक और निधि श्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा यह प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल AIRNews_ पटना पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया जा रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण

0: रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने योग्य अभ्यर्थियों से मेले में शामिल होकर लाभ उठाने की अपील की है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक दर्जन से अधिक छात्राओं की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दो दिन पहले भी जिले के एक स्कूल में प्रार्थना सत्र के दौरान 27 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली नई मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण। प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन। प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मैं जिमुत वाहन, राजकुमार जिमुत वाहन।
2: कहाँ है तुम्हारा बेटा?
3: ऊपर पहाड़ी के मंदिर में दर्शन करने गया है।

0: माँ माँ माँ माँ माँ मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं जल्दी में हूँ, पक्षी के आने का समय हो गया है माँ।
1: चुक चुक जियो मेरे बेटे, आज तुम्हारे प्राण बच गए।
0: क्या क्या कह रही हो माँ?
1: हाँ बेटे, आज तुम्हारी जगह एक दूसरा व्यक्ति अपने प्राण दे रहा है।
0: कौन माँ? कौन है वो?
1: राजकुमार जीमूतवान।
0: वो कौन होते हैं मेरी जगह प्राण देने वाले? माँ आज आज तेरे बेटे की बारी है माँ, आज आज प्राण की आहुति तेरे बेटे की होगी माँ, आज प्राण मैं दूंगा माँ, मैं दूंगा माँ, मैं दूंगा।
1: नहीं बेटे समझो, नहीं,
0: तुझे तो गर्व होना चाहिए माँ, तुझे तो गर्व होना चाहिए
1: माँ। नहीं बेटे नहीं
0: माँ,
1: नहीं नहीं
0: आज
1: नहीं बेटे नहीं
0: माँ, आज प्राण मुझे देने दे माँ,
1: नहीं बेटे नहीं।

0: नहीं राजकुमार, तुम प्राण नहीं दोगे। चले जाओ यहां से। आज आज मेरी बारी है। लौट जाओ संगचूर, चले जाओ यहां से।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
0: तुम होते कौन हो मेरा स्थान लेने वाले?
2: मैं हूं राजकुमार जिम्मतवाहन। मैं क्षत्रिय हूं। दूसरों के प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इस पक्षी से लड़ूंगा और इसे मार डालूंगा।
0: तुम मूर्ख हो राजकुमार। इस महान शक्ति से तुम कभी भी विजय नहीं पा सकते। तुम तो मरोगे ही, और इस महान पक्षी का क्रोध हमारी जाति पर टूटेगा। हम सारे नाग मारे जाएंगे। पता नहीं कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम लौट जाओ राजकुमार, तुम लौट जाओ।
2: नहीं समझो।
3: कौन हो तुम?
2: मैं हूं राजकुमार जिम्मतवाहन।
3: तुम नाग तो नहीं लगते?
2: मैं क्षत्रिय राजपुत्र। ये मेरी प्रजा है।
3: आज तुम मेरा आहार बन के आए हो?
2: मुझे आहार बनाना इतना सरल नहीं पक्षीराज। इससे पहले कि तुम मेरे प्राण लो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
0: पक्षीराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए पक्षीराज। मैं आपका आहार हूं पक्षीराज। मुझे ग्रहण कीजिए पक्षीराज।
3: तुम अपने प्राण देने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो जिम्मतवान? चले जाओ यहां से।
2: ये मेरा कर्तव्य है। दूसरों के प्राणों की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है।
3: मैं तुम्हारी वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न हूं जिम्मतवान।
2: यदि आप प्रसन्न हैं तो नागों पर कृपा कीजिए। इनके प्राणों पर संकट बनकर रोज यहां ना बंद कीजिए।
3: फिर मेरा आहार, मेरा भोजन?
2: आपके भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। आप निश्चिंत रहें, आज से आप मेरे अतिथि हैं।

0: राजकुमार, राजकुमार चिम्मटवार की, राजकुमार की
1: जय। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से एक प्रश्न किया। ये बता विक्रम कि राजकुमार जीमूतवाहन और शंखचूड में कौन अधिक वीर और साहसी है? वीरता किसमें अधिक है? कौन अधिक हिम्मत वाला है, जीमूतवाहन या शंखचूड?
2: जल्दी बता
3: वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ।
4: बेताल, शंखचूड़ में साहस अधिक है, वो बड़ा वीर है। जीमूतवाहन ने जो वीरता और साहस दिखाया वो उसका धर्म था, कर्तव्य था। शंखचूड़ जानता था कि उसके प्राण बच गए हैं, अब उसे पक्षी का आहार नहीं बनना है, उसकी जगह अब जीमूतवाहन अपने प्राण देगा। लेकिन उसके बाद भी वो आया, उसने राजकुमार को रोकने का प्रयत्न किया और स्वयं आहार बनने के लिए पक्षी का आवाहन किया। बेताल, शंखचूड ज्यादा साहसी है, वो ज्यादा बड़ा वीर है।
0: कल्पवृक्ष, पक्षीराज हमारे अतिथि हैं, उनके भोजन का प्रबंध कीजिए।

0: ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया। तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं।
1: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
2: मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है।

0: चाहते हो मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100 1।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
5: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
10: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो,
11: तो क्या हुआ?
10: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरे दोस्तों से भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं।

0: Hey guys, this is Ramji Gulati. Thank you for showing so much of love to Tere Bin Kiwe Rawangi. Guys, we've just re-uploaded the song and we need all your support. Jitna pyar aapne pehle diya, please continue to do so. Like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. For those who love me and my team, we'll subscribe here and we're going to promise you, we're going to give you a lot of songs more.
1: Ab beta, bahu ghar aane wali hai. सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198869।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
5: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस। रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये है कैंपस। रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए BE, BTEC सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में BE, BTEC सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं RGIPT.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। TGT गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। TGT हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। TGT सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त है, संविदात्मक। TGT मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त है, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित। और प्रयोगशाला सहायक, विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में एक एक स्थान अनारक्षित संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, 3 स्थान यहाँ रिक्त है संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का, www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
6: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
9: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
10: क्यों, क्या हुआ है?
9: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
10: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
9: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
10: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर

0: अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में यह पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किये। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27।
12: 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: ठक ठक।
15: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
17: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
17: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
16: क्यों क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
16: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
17: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
20: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला, जनजाति गरिमा उत्सव की हुई शुरुआत, मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत, बैकुंठपुर में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की घटना स्थल पर ही हो गई मौत और पारिवारिक कलह से एक युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जिले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। सभी संबंधित अधिकारियों को 24 घंटों के भीतर अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का सख्त निर्देश भी दिया गया है। इसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार नीरव कुमार पाल जो प्रोबेशनर DSP हैं और पुलिस कार्यालय गोपालगंज में तैनात थे, इनको अब मीरगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि मीरगंज के थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है, ऐसे में अब यहाँ DSP प्रोबेशनर नीरव कुमार पाल को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं चंदन कुमार चौबे को भोरे का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये पहले मोहम्मदपुर थाने में तैनात थे। इसी तरह टिंकू कुमार जो मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष थे, उनको अब उचका गांव थाने में अनुसंधानकर्ता के रूप में उनकी तैनाती की गई है। इन सभी पदाधिकारियों को 24 घंटों के भीतर जल्द से जल्द अपने नव पदस्थापित स्थल पर योगदान देने का निर्देश जारी किया गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा 18/5/2026 से 25/5/2026 तक जनजाति कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक एवं संतृप्त करने हेतु जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रव्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें सभी 22 विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा जिले के उचका गांव प्रखंड का चयन किया गया है। इस दौरान उचका गांव प्रखंड के 11 पंचायत के कुल 19 गांवों को जोड़ा गया है। प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा कैंप लगाया जाएगा। प्रत्येक कैंप में सभी विभागों का स्टॉल लगेगा। जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी 22 योजनाओं के लिए जन सुनवाई की जाएगी। इसमें सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और कर्मी भी उपस्थित रहकर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करेंगे। कटिया थाना क्षेत्र के सहजनवा कला गांव में पिछले 4 अप्रैल को हुई मारपीट की घटना में घायल बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि मृतक किसान ब्रह्मा यादव की मौत के बाद आज उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। रास्ते के विवाद को लेकर पिछले 4 अप्रैल को मारपीट की घटना हुई थी। मृतक खेत से घर लौट रहे थे, इसी दौरान आरोपियों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी थी। लाठी डंडे से हुई उनकी पिटाई से वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में करने के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर में वे जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि कल रात इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने अब इस मामले में हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे इस मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर गांव में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को जोरदार ठोकर मारा, जिससे युवक सड़क पर उछलकर अचानक गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी दिलीप राम के 45 वर्षीय पुत्र राजनाथ राम के रूप में हुई है। राजनाथ राम अपने घर से लक्ष्मीपुर बाजार में सामान खरीदने के लिए पैदल जा रहे थे। इसी बीच जादोपुर गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि युवक संभल नहीं पाया और हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। आरोपी बाइक चालक की तलाश में अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। अब घटना के बाद से राजनाथ राम के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष ने बताया है कि मामले की छानबीन जारी है। पुलिस फरार आरोपी मोटरसाइकिल चालक की तलाश भी कर रही है, जो घटना के बाद बाइक समेत मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार अब मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने में लग गए हैं। इधर पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर जहरीला पदार्थ पीने की आशंका जताते हुए इलाज में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति देखते हुए गोरखपुर रेफर भी कर दिया है। इस मामले में सदर SDPO 2 राजेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस एक एक बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। FSL की टीम भी मामले में तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला माझागढ़ थाना क्षेत्र के सेखटोली गांव निवासी रोहित चौधरी के पुत्र धर्मेंद्र चौधरी हैं, जिनको संदिग्ध स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल घटना के बाद से परिवार में चिंता और परेशानी का माहौल भी देखा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से AIM की फ्री पाठशाला चल रही है, जिसमें 50 से 60 बच्चे नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया, जिसको लेकर MIM के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव अनस सलाम ने बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लगातार बच्चों की शिक्षा उनके द्वारा आयोजित की जा रही है और इस दौरान शिक्षकों के बीच भी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों के समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदकों द्वारा अपनी समस्याएं प्रस्तुत की गयी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आवेदनों के त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक लगातार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। इधर माझा थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रूपेश शाह को आज गिरफ्तार कर लिया। यह छितौली के रामायण शाह का पुत्र बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर जदयू पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू की है। जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने बताया कि संगठन और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और धारदार बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बरौली विधानसभा क्षेत्र के दानापुर में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इब्रार खां के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष ने बिहार में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे विकास कार्यों के संदर्भ में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी समर्पित ईमानदार जुझारू एवं पुराने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाएगी। अगर दलीय आधार पर चुनाव होता है तो निश्चित रूप से पार्टी अपने सिंबल पर भी अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में मजबूती से लड़ाने के लिए काम करेगी। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने लूट कांड के मामले में एक अप्राथमिकी अभियुक्त अंशु कुमार को गिरफ्तार किया है, जो सिरीपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव के हरिकेश यादव का पुत्र है। पुलिस ने इसको गोपालगंज के मोनिया चौक से विधिवत गिरफ्तार किया और अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। इसमें प्राथमिकी अभियुक्त सिकंदर यादव पिता दीनानाथ यादव, जो मठिया थाना नगर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। तो वहीं एक दूसरे मामले में ये भी हत्या के प्रयास का ही मामला है, इसमें फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राम विचार महतो को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और यहां के जगपति महतो का पुत्र है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आज नगर थाना की पुलिस ने इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर गोपालगंज के बंजारी चौक वार्ड नंबर 15 स्थित घनी आबादी के बीच शमशान में शव जलाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की बेंच ने गोपालगंज के डीएम और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें और दाह संस्कार के लिए आबादी से दूर बेहतर स्थान चुने। याचिका कर्ता के अधिवक्ता रंजीत पांडे द्वारा स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण की दुहाई दिए जाने के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। जनजाति गरिमा उत्सव की हुई शुरुआत। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की गोरखपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत। बैकुंठपुर में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की घटना स्थल पर ही हो गई मौत। और पारिवारिक कलह से एक युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
21: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
22: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
22: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
24: सुनिए सुनिए सुनिए,
25: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
24: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
25: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
24: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
26: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
27: कहाँ पर?
26: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
27: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
26: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
27: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
26: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
25: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
27: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
28: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेम 96.4 FM पे समय 9:23 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 7216 65 96। और ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो थोड़ा पुराने गाने के फरमाइश करने की कोशिश करना है ताकि आपकी फरमाइश हम सुना सके और आप सुन पाए। ऐसा ना हो कि आप नए गाने के चक्कर में पुराने जो गाने हैं वो आप ना फरमाएं और हम आपकी फरमाइश पूरी ना कर पाए। तो आप डायरेक्ट पुराने गाने का फरमाइश करें, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई मैसेज रिसीव नहीं हुई है तो एक प्यारा सा सॉन्ग अपने तरफ से प्ले करते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

फोर एफ एम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश। और इस समय जो है आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अभी कोई मैसेज हमारे पास नहीं पहुँची है, और हमें लग रहा है कि थोड़ी डिवाइस में प्रॉब्लम है जिसके कारण मैसेज हमारे पास रिसीव नहीं हो रही है। तो एक और प्यारे से गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं फिलहाल। और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं अपने मैसेज को सेंड करें, और जैसे हमारे पास मैसेज रिसीव होगा वैसे आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रामझिम 94.4 FM पे, और आप सब भी बने हुए हमारे साथ। और यहाँ पे आगे मैसेज हमारे पास रिसीव हो चुके हैं और कई श्रोतागढ़ की मैसेज पहुँची है। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो जी नमस्ते, सॉन्ग तेरे नैना बड़ा कातिल मार ही डालेंगे। और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। और चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, कैसे हैं सर, सॉन्ग कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो, पास आके कहो, कहो ना कहो कि तुमको मुझसे प्यार है। डेडिकेट सभी को श्रेया फ्रॉम अहमा मौजम से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। ओ बिल्कुल सुनाएंगे आपकी फेवरेट सॉन्ग। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है गाने, और मैसेज करते हैं विपुल सिंह गाने के फरमाइश करते हैं, आने से उसके आए बाहर, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो सर नमस्ते, आप कैसे हैं, अनुजा कुमारी मैठी काला से। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना बताएं और सारे दोस्तों को बोल देना मेरे तरफ से नमस्ते। बिल्कुल आपकी फुल मैसेज हमने शामिल कर दी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर समीर आलम जंगलिया से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, सुन भाई राम राम भोला शाखे मठनिया से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली श्रोतागढ़ की फरमाइश को साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं। यहाँ पे एक कॉल आ रहा है, अंत में 184 है, तो आप श्रोतागढ़ कॉल ना करें और मैसेज करें जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं। यदि मैसेज करते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और कॉल के माध्यम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा समझे और मैसेज अभी सेंड करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई श्रोतागण की मैसेज भी पहुँची है मेरे पास और आगे श्रोतागण की फरमाइश भी पहुँची है। और अगला मैसेज लिखा गया है कि थैंक्स, आपको धन्यवाद रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मैं सचिन जायसवाल। तो बिल्कुल सचिन जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि राधे राधे सर, मैं इस शो में पहली बार जुड़ा हूँ और बिल्कुल आपका स्वागत है। और गाने की फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया कि हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप और मुझे सॉन्ग सुनना है तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल इस मैसेज को करती हैं सोनी सरयावर नंबर 1 गोपालगंज से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग बज रहा है सरिया फ्रॉम अम्मा मजम से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा गाना सुना दीजिए। बिल्कुल लेके करके तो ही गाने की फरमाइश हम पूरी करेंगे। अभी तो एक ही गाने हम सभी श्रोतागण की फरमाइश से सुने हैं, अभी कई सुनने हैं तो आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश सिरिया की प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। कसम खा के कहो, कहो ना कहो कि तुमको मुझसे प्यार है।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हो बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल।

0: पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94 एफएम पे सोशल लेस में इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई श्रोतागण की फरमाइश वाला मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे मैसेज और अगली गाने की फरमाइश दीपक एंड जेलर जी की प्ले होगी और इन्होंने गाने की फरमाइश करते हैं शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। और आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज देखते हैं फिर गाने को प्ले करते हैं। आगे मैसेज में लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, मेरा नाम है आस्था पटेल और मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज करती हैं श्रोनी और लिखती हैं वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़। बिल्कुल आपकी भी सॉन्ग सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अब अगली फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं दीपक एंड जेलर जी की।

94 FM पे इस गाने को सुन रहे थे। दीपक खंड जेलर जी की फरमाइश पे शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। और आगे कई मैसेज, अगला मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस गाने के फरमाइश करते हैं विपुल सिंह गोपालगंज से, और गाने का बोल देते हैं आने से उसके आए बाहर। तो इनके गाने हम प्ले करेंगे। आगे कुछ और भी सुरतागढ़ की मैसेज पहुंचा हुआ है। आगे मैसेज करते हैं दीपक एंड जेलर जी, थैंक्स भैया जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए और गाने के फरमाइश करने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, वेरी नाइस सॉन्ग, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़, बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज, हाय सुनो भैया, मेरा नाम आस्था पटेल। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है और एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं विपुल सिंह की फरमाइश रेडियो रमझम 94 FM पे कार्यक्रम SMS फरमाइश में।

काफी प्यारा संग, काफी प्यारा संग रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे सुन रहे थे अभी हम सभी रफी जी की आवाज में। और ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग रहा। आगे कई मैसेज और आगे गाने की फरमाइश करती हैं सोनी सरेवर नंबर 1 गोपालगंज से, और गाने का बोल देती हैं, अब तक तुझको मेरी वफा न समझ न आई। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

94.4 FM सुनने आप सब, और लाख आग्रह और निवेदन करने के बाद भी कई हमारे श्रोतागण ऐसे ही जो नए गाने की भी फरमाइश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो गाने अब रुक के ही रखा जाएगा। गाने की फरमाइश अगली पूरी करेंगे हम भोला शाह जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, और गाने का बोल देते हैं। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, तो इनकी प्यारे गाने हैं मुजरा, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम छिम 90.4 FM पे।

कभी प्यारा संग्रह रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे भोला शाह जी के द्वारा फरमाए गए गाने अभी सुन रहे थे हम सभी। मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूम। आगे कई मैसेज और कई श्रोतागण की फरमाइश है और अगले गाने की फरमाइश भी प्यारे पहुंची और इस गाने की फरमाइश आस्था पटेल के द्वारा पहुंचाया गया है और इनके तरफ से गाने की फरमाइश दिया गया है मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। तो चलिए आपके गाने भी हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे।

कभी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे शो चल रहा है, इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा सॉन्ग सुना दीजिए, और इस मैसेज को करते हैं अनीश कुमार गोपालगंज से, और गाने के फरमाइश करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं कुमार शानू की आवाज़ में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत अच्छा सॉन्ग, और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सोल नेपाल बॉर्डर से। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने की फरमाइश थी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि प्लीज़ मेरा सॉन्ग सुना दीजिए, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल अब तो अंतिम गाने हम प्ले करने जा रहे हैं, और यहाँ पे देखे तो समय समाप्ति से हम आगे निकल चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब सुनते रहें रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दर्शन भैया, बड़ा मजा।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुनीले बाजूले बबुआ के नानी के हसुनीले बाजूले कंगनाले करदनले पहुँची।

0: गैया के दूध कके बाबू रे खुद मोटाके, गैया के दूध कके बाबू रे खूब मोटाके, बाबू रे खूब मोटाके पुआ ऐसन गाल फुलाके,
1: खड़िया ऐसन पेट बढ़ा के खुरपी ऐसन दांत दिखा के,
0: हम ससुर आर जाके अखियन से भाव बता के लोग टका टक ताके, मोर ससुर आके कमर लचका के नाच बताता थैया, कमर लचका के नाच बताता थैया।

0: ढोलक के जोर से भैया, ढोलक के जोर से भैया, ढोलक के जोर से भैया, ढोलक के जोर से भैया,
1: दुना दिन दिन दुना दिन दुना दिन दिन दुना दिन,
0: भैया रे ताला टूटे
1: कमर को खूब न जाके,
0: चमा चम चमा चम
1: चमा चम चम चमा चम
0: चमा चम चमा चम
1: चमा चम चमा चम।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 80

0: 0229-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
2: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम, कैसी हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: बस काम हो रहा है। गाना सुनना था।
2: जी बिल्कुल, बता दीजिए गाने का नाम।
1: अदनान सामी का गाना है, तेरा चेहरा जब नजर आए।
2: और सुनवाना भी है?
1: आप वाइफ को डेडिकेट है ये गीत।
2: अच्छा अच्छा,
1: और बाकी सारे लिसनर्स को।
2: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना।
1: नाम नहीं पूछिएगा।
2: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
1: हाँ अनिल बोल रहे हैं
2: जी।
1: ठीक है, तो प्ले कर दीजिएगा।
2: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सोने कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हाँ मैडम, ठीक है, गाना सुनना है।
0: जी गाना सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से।
1: मेरा नाम है मनोज कुमार।
0: जी कैसे हैं मनोज जी?
1: ठीक है
0: जी। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: तो मुंगेर से बात कर रहे हैं, हवेली खड़गपुर।
0: अच्छा,
1: राम गोबड्डा।
0: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: गाना सुना दीजिए आप शारदा सिन्हा का, कोई विवाह गीत, अभी विवाह का टाइम चल रहा है ना, शारदा सिन्हा का विवाह।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: सुनवाना है सरिता देवी, बरखा कुमारी और आपको।
0: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर एक है।
5: जी का हाल चल अहमद जी?
6: ठीक बस जी, अपन बताइए बारिश में कैसा लागता?
5: अरे का बताइए कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धनी तले बारिश तेज हो गए, खुला लाटो 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
6: भाग मनाई की पहुँच गए नहीं है, आइयो ना कोई दिन
5: ना। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
6: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठानी है ना।
5: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
6: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता पूछे मोमेंट से।
5: ना ना जुलूम नहीं था, होते ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ
6: जाये। अब सारी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
5: ना
6: लागल ना लागल 126 बार डायल कर ले बनी।
5: अच्छा अच्छा चले लागल बता दी।
6: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में सुना के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के राघव जी के दिलीप भाई के और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के आज कहिया बाजी गानवा गानवा कब बाजी आज की का
5: आज बाजी आज शाम के 5 से 7 के बीच में आई।
6: ठीक बा
5: जी,
6: चलिए शुक्रिया
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
7: हम किस्मत बोल रहे हैं चंद्रा से।
6: जी क्या हाल चल रहा दादा जी?
7: मैं ठीक बाबू। ठीक बनी सर, लगे ठीक बनू।
6: जी जी बिल्कुल बढ़िया बनी।
7: अच्छा बारिश हो रहा बा?
6: जी काफी तेज बारिश हो रहा बा। तो खाना पीना हो गल बा?
7: हाँ खाना पीना हो गल बा, जुम्मा हो रहा वाले देखो बारिश हो रहा।
6: तो बता दी कौन गाना सुने के बा?
7: कौन सुनी लिया?
6: अच्छा हाँ कव्वाली तो सुने नहीं, तो बता दे कव्वाली के नाम।
7: अपना मन से बोलिए बजा लिया पूरा।
6: अच्छा ठीक बा,
7: ठीक बा।
6: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने।
8: न सुकून मिलता है बुझाने में, चैन मिलता है तो सा

0: हाँ जी, मैं लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से बात कर रहा हूँ।
1: जी, क्या हाल चाल है लाल बाबू जी?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे।
1: जी जी, बिल्कुल बढ़िया है
0: जी। हम गाना सुनना चाहते हैं, राना जी माफ करना।
1: जी, और सुनवाना भी है
0: जी। सभी रेडियो रिंजिन के श्रोतागण को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी जी, और क्या करते हैं आप? सुबह पहली बार कॉल किए हैं
0: जी। मैं एक्सेलेटर मशीन चलाता हूँ, पोकलेन, इसी भाषा में बोले तो पोकलेन चलाता हूँ। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, यहीं से रेगुलर को सुनते रहता हूँ।
1: मतलब हेलो माय चॉइस में कॉल आपका पहली बार है?
0: जी, कॉल पहले भी किए हैं लेकिन एक दो साल पहले किए।
1: अच्छा,
0: अभी तक नहीं किया था कुछ दिन।
1: चलिए, तो प्ले करें गाना आपकी।
0: जी जी जी, ओके, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुने कॉल किया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: सुनील जी नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
2: कोई बहुत बहुत स्वागत है।
3: लाल बहादुर बात कर रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: कैसे हैं?
2: ठीक है मैम भाई, इधर तो बारिश हो रहा है।
3: अरे पूछिए मत, कितना बारिश हो रहा है इधर।
2: आपका तरफ हो रहा है उधर?
3: बहुत तेज।
2: मौसम को तो रोके कुछ इधर उधर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है कि नहीं? 18 जून का ऐसे तो मानसून आता है नियम के अनुसार से।
3: जी जी।
2: और पहले ही बारिश दशक दे चुके हैं, वर्षा हो रही है, इसके ख्याल में आपका क्या विचार है, क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए? बारिश वाला गाने को सुना दीजिए।
3: बारिश वाला?
2: हेलो
3: जी जी।
2: बरसात के मौसम में तेलंगाना सुनाई के आलम में। हेलो, हमारे जितने भी स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं ग्रामीण से और शहरी निगम निकायी से सहायता और हमारे भारत वर्ष में आया था आपको
3: जी, तो प्ले
2: कर रहे हैं
3: गाना आपके।
2: जी
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: क्या हाल चाल? अल्लाह में लाल भाई बोल रहे
1: जी बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक
1: हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: है पूरा अरे बारिश में बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना है सवेरे संयोजन बजरिया भक्ति गाना है
1: जी। और सुनवाना भी है?
0: बजरिया है, रूबी है, सुनना है और रजेश संजय है।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: ठीक है, सोनी बोल रहे क्या?
1: जी जी
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हाँ सुनी जी, पहचाना क्या?
7: जी गोपाल रॉय।
6: हाँ, फोन से तो आपसे बहुत दिन हो गया, बात नहीं हो रहा है।
7: जी जी, कॉल पे बात नहीं हो रही है। शो में आते हैं आप?
6: हाँ बोलिए।
7: बोल रहे शो में आते हैं, लाइव शो में।
6: हाँ वही तो वो प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, घर में सभी सुनते हैं। अच्छा, आप कैसे हैं बोलिए?
7: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे?
6: हाँ अच्छा।

0: शुक्रवार को खुलेगा 11 से 12:30।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
0: टाइमिंग अकॉर्डिंग का वो अपना टाइम में ही खुलेगा, बाकी टाइम बंद रहता है।
1: अच्छा अच्छा, आपका प्रोग्राम तो पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं, सभी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका।
0: तो गाना और भी कोई सुनता है क्या वहाँ?
1: हाँ, मेरा घर पे सुनते हैं, मेरा दुकान पे आसपास में कोई हुआ है ना, वो भी लोग सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: तो बोल रहे की आजकल तो किशोर कुमार का गाना बजा दीजिएगा।
0: जी बता दीजिए, किशोर कुमार का कौन सा गाना सुनिएगा?
1: राजपूत मूवी का है ना, मेरे संगे संगे आया तेरी, वो गाना है।
0: जी जी,
1: बजा दीजिएगा
0: और डेडिकेट भी करिएगा।
1: हाँ, आपको आपको रिलीजन परिवार के सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हूँ, सभी सुन रहे
0: गाना आपके।
1: अच्छा अच्छा, ये गाना कब सुनेंगे?
0: आज शाम को, आज या कल में 5 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाएगी, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, आधा आज चलेगा और आधा कल चलेगा।
1: ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ।
0: तो अगर आज आपका गाना 5 से 7 के बीच में शाम को नहीं बजा तो इसका मतलब है कल पक्का है कि बजेगा।
1: ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। गाना तो रेडियो में गाना सुनने में मजा ही अलग होता है ना।
0: और इसका रिपीट चलता है सुबह 9 से 11 के बीच में।
1: क्या बोले?
0: जैसे शाम को 5 से 7 के बीच में अगर आप नहीं सुन पाते हैं,
1: अच्छा,
0: तो नेक्स्ट डे आप 9 बजे से 11 बजे के बीच में सुबह सुन सकते हैं।
1: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: रिपीट चलता है।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है सुनी जी, ठीक है। आपका पढ़ाई चल रहा है क्या?
0: जी जी, अभी तो चल रही है।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत लगातार बहुत प्यारे समय।
1: तो मैडम जी
2: नमस्ते, तो कैसी हैं नेहा जी, बताइए।
1: अच्छा है, आप बताए कैसे, नाश्ता हो गया?
2: जी हाँ हो गया है, आपका हुआ?
1: हाँ हो गया।
2: तो अभी क्या हो रहा था?
1: अभी तो आपके पास फोन लगाया है तो कुछ बिजी बता रहा था, तभी लग गया।
2: तो आज गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है लैला ने कहा मरी मेरा गाना ही,
2: और सुनवाना भी है
1: जी आपको। आज इतना रेडियो रिमझिम आर्जे है, दोस्त सब सुनते हैं को सभी के साथ।
2: चलिए तो प्ले करेगा ना आपके
1: जी मैडम जी। नमस्ते
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने कॉल की।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
5: Hello, hello, hello, hello, hello.
4: Bhaage bhaage firte hain.
6: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और

0: लेते हैं अगला कॉल।
1: प्रणाम मैडम।
2: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी मैडम।
2: जी, नाम बता दी आपको?
1: सुनने का था महेश शर्मा।
2: जी जी, तो कौन गाना सुने को बता दी?
1: गाना सुनने के बाद दुपट्टा मौसी के मौसी वाला गाना ना निकला हुआ।
2: कौन गाना?
1: दुपट्टा मौसी के निकला हुआ गाना ना।
2: दुपट्टा मौसी के हमके ना पता बा, गाना बढ़िया बा, सुन ले बने।
1: सुन ले बने, ललका दुपट्टा मौसी के।
2: अच्छा, और सुनवाई के भी बात?
1: जी जी, गाना सुनने।
2: चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम
0: जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: संजय शाह, फुली डुमर बिहार से बोल रहे हैं, बांका जिला।
0: जी क्या हाल चल रहा है?
1: ठीक है।
0: तो क्या हो रहा था?
1: गाना सुनना है
0: जी, बिल्कुल।
1: साड़ी का मोती है घड़ी के,
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे गाना, नाम बता दीजिए गाने का।
1: संजय, साड़ी का मोती है घड़ी के, भोजपुरी सॉन्ग है।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: हाँ, आपको सुनवाना है और जाके जो है जितना सरोता गण है सबको सुनाना है।
0: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी,
1: प्ले कीजिए। ठीक
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किए।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: जय हो पवन।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: मेरी लाडली की जय, स्वामी जी महाराज की जय, श्यामा जी की जय, कुंज बिहारी जय, अच्छा श्री अच्छा अच्छा अच्छा
1: बाबा जी राधा गोपीनाथ
2: जी राधा रमन जी
0: ब्रजवासी जल लिया
1: श्री श्री भगवान
0: दो मिनट बैठ जाओ
1: जी स्वामी जी को स्वामी जी
0: देखो लोगों के ऊपर प्रियाजू की बहुत कृपा है। ये जो ब्रज 84 कोष धाम है इसमें जो वृंदावन है ये मणि है। जैसे मुकुट होता है ना और मुकुट और फिर मणि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमें गर्व करना है। जो लौकिक गर्व है वो पतन का कारण होता है। जो भागवतिक गर्व है वो हमें प्रेम प्रदान करता है। जैसे विट्ठल विपुल देव जी हमारे माई श्यामा ये हमारा हृदय जो है ना गर्वित होना चाहिए। हरिराम व्यास जी का हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी हृदय में मेरी महारानी श्री राधा भगवत ऋषि की महाराज आचार्य चरण श्री हित महाप्रभु जी राहो को काहो मने दिए मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी के मुख से श्यामा कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी रात दिन कुंज बिहारी रीज रीज पायन परत श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीज रीज पायन ये हमारे गर्व का विषय है। हम ब्रज वृंदावन रज का सेवन करने वाले और इन महापुरुषों के कहलाए हम। एक बार हम भिक्षा मांगने गए तो बिहारी जी के गोस्वामी परकर बोले देखो री बाबा जी आयो राधा वल्लभ जी को दीजियो। हमें रोना आ गया कि ये मुझ अधम का संबंध प्रभु से देखो राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है मतलब ये बात सोच सोच के हमारा हृदय फूल। तो हमें इस बात का गर्व करना है कि हमें जो आचार्यों की शरणा स्वामी जी महाराज वो रस जो ना आगमों में है ना निगमों में है ना पुराणों में ब्रह्म ऋषि मोक्ष सुख और ये रस मोक्ष सुख त्यागी जो मोक्ष सुख का भी त्याग जितना भी वेद प्रतिपादित साधन सब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार मात्र है। जिनके नूपुरों की झनकार से प्रणों प्रकट हुआ है उसी प्रणों को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर नूपुरों की झनकार और नख तेज मणि सारा वही

0: वो वेद शास्त्र पुराणों का वहीं से है।
1: श्यामा जो हमारी है,
0: हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। ये शब्द बहुत कठिन है आगे वाला, नाहिन आन सो। हम लोग ये तो कह देते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, पर ये पूर्ति नहीं कर पाते। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो, ये यही हम फेल हैं। ये बात तो हम बोल सकते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, लेकिन ये बात जो अधूरी है इसलिए वो रंग नहीं ला रहे। जो हमारे माई श्यामा जू को राज से रंग आता है ना, वो तभी आता है नाहिन आन सो। जैसे मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, तो हम बोल सकते हैं सब मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरो ना कोई यहां फेल है, देख लो ना है नहीं। ये जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो काज, अगर ये सुधार लो उसे विठल विपुल विहारिन केवल, क्या दिखाई देता है, दिन जलधर संग गाज, जैसे नवीन मेघ में बिजली चमक रही, ऐसे श्याम घन लाल जू के हृदय से हमारी श्यामा जू सुशोभित हो रहे विराजमान। आज दो दामिन मिल बहसी, ऐसा अनंत कोट बिजलियों की सी मृदु कांति लाडली जू की है। पीता रुण क्षय मनंत तड़े लता भाम, अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो तो भी वो प्राकृतिक ही होंगी। हमारी लाडली जू का सौंदर्य प्यारी जू, जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम हो तो देखू न कबहूरी। लाल जू कह रहे हैं जिनके रूप मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, वो प्रभु कह रहे हैं। स्वामी जी महा ये कौन बात जू, अबहिन और अबहिन और अबहिन, ऐसी महारानी जू के हम है, ऐसी महारानी जू के अंदर से श्यामा जू के चरणों की ठसक रखो और मुख में नाम और आचरण पवित्र, तो अभी आखिरी जन्म है अपने लोगों का। हम लोग धामवासी हैं, रजोपसेवी हैं, इतने बड़े महापुरुषों के जिनके अधीन प्रियालाल हैं, जैसा बोले वैसा प्रियालाल करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य विस्मरण करके जो हमारी प्यारी जू के हाथ बिकाए हुए हैं, जाके अधीन, अधीन शब्द है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व विस्मरण करके श्यामा जू के अधीन है। सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू, बस ये प्रार्थना है कि आचरण न बिगड़ने पाए। नहीं हम जवान से बोलेंगे हमारे माई श्यामा जू को राज, पर सुख हृदय में नहीं होगा। श्यामा जू के चरणों के सुख के लिए जब मोक्ष भी सुख कड़ुआ लगने लगा, थुतकी कृत्य महाप्रभु हरिवंश संजू कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित समन सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। प्यारी जू की मंद मुस्कान नूपुरों की जानकार के आगे और लाल जू की वेणु वादन, बोले पाए ये जो सुख है जब हृदय में आ जाएगा तो पग पेल, मोक्ष सुख भी ठुकरा देने योग्य हो जाता है। इसलिए हमें तो चिंता ये नहीं करनी कि अब पता नहीं हमारा उद्धार हो कि ना हो। उद्धार तो बहुत छोटी मोटी चीज है, उद्धार तो यहाँ गलियों में बटता है, मोक्ष सुख तो मारा घूमता है। नहीं हरिराम व्यास जी कह रहे घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे जो पे वृंदावन रस भावे। ये आचार्य कोटि के महापुरुष है, महापुरुषों का रसास्वादन वाणियों से ही होता है। इसलिए हम सब इस बात के गर्व में रहे, हमारे पास धन नहीं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, पर हम महारानी जी के हैं, हम वृंदावन रजोपसेवी हैं, हम आचार्यों के लाडले हैं। क्योंकि देखो पक्की मटकी को तोड़कर बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर जो चाहो बना लो, हम सब कच्ची मटकी है। कह बच्चा के पेट और घट करे बिना, कुंदन के बासन हम नहीं बन सकते। भगवत ऋषि जी ने जो इस रस के लिए कहा ना, ललिता सके उपासना है सिंगिन को चीर, ये कुंदन के बासन नहीं बन सकते, कभी ब्रह्म में मत रहना। हम बच्चा बन सकते हैं, आज जैसे है अपने स्वामी जी के, अपने हित जू के हैं, ऐसी भावना से और नाम जप आचरण पवित्र हो। आप सब भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अब आप कहीं भूल से मदिरा पान कर ले, कहीं ऐसे, मतलब बहुत ही हम गिर गए, फिर बात नहीं बनेगी। बात समझो, आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन फिर वस्तु नहीं दर्शेगी, चाहे जितना ना पाई है बिन स्वामी अकेली, बिपिन बसत बैराग जुत ज्योलरिखाई खेल। इसलिए भैया बाजी जीत गए हम, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात। हमको वृंदावन मिला, हमको स्वामी जी के कहलाने को हुआ, हितजू के कहलाने को हुए, हम गर्व से जब बोलते कुंज बिहारी श्री हरिदास, अब कौन परास्त कर सकता, वो जाने हम तो उनके हो गए ना, राधा वल्लभ सिंह वो जाने हम उनके हो गए, अब वो संभाले, उन्हीं का तो सारा प्रपंच है। स्वामी जी ने बड़ी गूढ़ बात कही, तुम्हारी मायाबाजी पसारी बिच सुन मुनि मोहे काकी कोर, ओ कह हरदास तुम्हारे हम जीते। बात समझो, अगर कहीं फिसलन हुई आपने हमारी तरफ देखा तो आपकी तरफ से प्रणय कोप से देखेंगे कि आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें, क्योंकि आपका ही सारा खेल है, पर हमारी जिभ्या से हमारे हृदय से केवल उन्हीं से संबंध रहे तो फिर माया परास्त नहीं कर पाएगी। राधा लल्ला कुंज बिहारी श्री हरिदास, निहाल कर दिया आप ब्रजवासी, उन्हें दर्शन दे चाय बहुत देर हो गई। सही पूछो तो बहुत जलने से मिलने का फल मिल गया कि आप मिल गए, आप ब्रजवासी। जैसे आप सब बैठे ना, हमारे मन में ऐसे ऐसे लगता है कि क्या करूं, कैसे आपको सुख पहुंचाऊं, पर बस केवल लगता है। हाँ, हमें लगता है श्री जी का किलका देव सब आपस में ले लेंगे। अगर ब्रजवासियों की जूठन, ब्रजवासियों की चरण धूलि ना हो तो कुछ नहीं, जैसे पंखा डोल रहा है ना, बिजली ऑफ कर दे, देखो क्या इसमें कुछ ले। ऐसे ही जो इधर आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी जूठन का प्रभाव है, वो आपकी चरण रज का प्रभाव है। आप ब्रजवासियों की चरण धूल, ब्रजवासियों की जूठन, बस बिसरी हो ना बिसारी हो।
2: दिल बो